मेगाहर्ट्स पर ये तुम्हारे सारे दा अपना रेडियो गुंचन धर्मशाला कहने श्रोताओ, मैं या तुम्हारी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हुई कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक। ता श्रोताओ कर देना अज दे कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीत दे कहने तुम्हारे सारे इन्हें बनी रिया रेडियो गुंचन धर्मशाला ने गूंज अपने तंदी।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहां सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

ये तो हाँ अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो हाँ सारे इन्हें बनी दिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तोहदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी।

गुंजन धर्मशाला गणेश श्रोताओ, इस वक्त तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे न माटी दी महक जी श्रोताओ, ता बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुनदे न कार्यक्रम दा अगला गीत। तुहां सारे इये बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

हम बोला करते हैं ना रेडियो गुंजन धर्मशाला ते गणेश होताओ तो हाँ सारे ही इस वक्त कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ देना कार्यक्रम जो अगे कने सुन देना कार्यक्रम दा प्यारा दिया अगला गीत तो हाँ सारे ये बनी दिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने बंदी।

नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। जय माता दी।

0: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
1: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
0: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
2: आप चिंता ना करें।
0: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का है? ये तो खोटा सिक्का है।
2: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
3: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज। काहे नहीं सुनते आप हमारी?
4: तुम क्या खड़ा हो?
3: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाएं, पक्का?
3: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
6: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
7: दहेज मुक्त बिहार, संकल्प हमारा।
8: शालू बात माने ना तो करवा ले।
9: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
8: अरे वाह, नौकरी लग गई
9: जी।
8: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
9: अरे काका भी है।
8: अच्छा,
9: काका लड्डू खाओ।
10: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
9: बैंक में काका।
11: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
12: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
11: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
9: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
13: बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
12: क्यों भाई?
13: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
12: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
14: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
9: जी।
15: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
16: वही असली तरक्की।
15: एक कदम स्वच्छता की ओर।
17: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना, वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं, बस दूर जाना चाहता है। और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि कुछ लोग वापस नहीं

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
5: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
6: क्यों, क्या हुआ?
5: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
6: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ।
7: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
8: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
7: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया।
8: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 MHz पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे थे अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। जय माता।

0: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
1: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
0: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
2: आप चिंता ना करें।
0: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का है? ये तो खोटा सिक्का है।
2: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
3: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
4: तुम क्या खड़ा हो?
3: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाएं, पक्का?
3: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
6: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
7: दहेज मुक्त बिहार, संकल्प हमारा।
8: शालू
9: माने ना तो करवा ले।
8: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
9: अरे वाह, नौकरी लग गई
8: जी,
9: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
8: अरे काका भी है।
9: अच्छा,
8: काका लड्डू खाओ।
10: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
8: बैंक में काका।
11: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
12: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
11: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
8: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
13: बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
12: क्यों भाई?
13: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
12: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
14: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
8: जी।
15: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
16: वही असली तरक्की।
15: एक कदम स्वच्छता की ओर।
17: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं, बस दूर जाना चाहता है। और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि कुछ लोग वापस नहीं

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां, जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते, उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं, वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
5: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
6: क्यों, क्या हुआ?
5: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
6: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ।
7: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
8: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
7: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया।
8: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

दोस्तों, हर इंसान की कहानी अधूरी होती है। कुछ पन्ने वक्त लिखता है और कुछ पन्ने हमसे लिखवाता है। जरूरी नहीं कि हर मोड़ पर खुशी मिले, कई बार दर्द ही हमें समझदार बनाता है। नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है दोस्तों आप सभी का बेहद प्यारा सा खूबसूरत सा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर। तो स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में ढेर सारी बातों के साथ और कुछ प्यारी प्यारी सी सीख भरी बातों के साथ। जी दोस्तों, जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें कई बार जो है डीमोटिवेट करती हैं, तो कई बार मोटिवेट भी करती हैं। कुछ प्यारी सी, कुछ खास जिंदगी की एक छोटी सी बात, एक छोटा सा शब्द यदि हमें प्रेरित कर जाए तो देखिए जिंदगी कितनी अलग मोड़ पे हमें लेकर चली जाती है। और न कभी कि हमने सोचा होता है कि एक छोटा सा शब्द जो है हमारे लिए इतना कुछ कर सकता है। खैर दोस्तों, आज 13 अक्टूबर 2026 का दिन है और नवरात्रि के पावन अवसर पर आज जो है तीसरा नवरात्र आप सभी मना रहे हैं। जी दोस्तों, माँ दुर्गा के 9 रूपों की जो है वो आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, भक्ति में जो है वो रंगे हुए हैं। तो ये आशीर्वाद माँ का आपकी ज़िंदगी में इसी तरह से बना रहे, खुशियाँ जो हैं आपके घरों में आती रहें, ये हम उम्मीद करते हैं दोस्तों। और ये जो है एक बहुत ही भक्ति भरा समय है, और ख़ास करके हिमाचल की बात करें, कांगड़ा की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु जो है माँ के आशीर्वाद लेने के लिए नवरात्रि के इस पावन अवसर पर पहुँचते हैं। तो ज़रूर जाइए और उस श्रद्धा भरे वातावरण में अपने मन को शांत कीजिए। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में हम बातचीत के साथ तो शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं मनोरंजन के साथ, एक प्यारे से गीत के साथ। तो एंजॉय कीजिए अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से कार्यक्रम का ये पहला गीत।

दोस्तों, 91.2 MHz पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला बहुत ही प्यारी सी धूप खिली खिली के साथ। जी दोस्तों, तो ऐसे समय में, खास करके खेती के काम के समय में, ये प्यारी प्यारी सी धूप जो है सुकून देती है और थोड़ी सी राहत भी देती है, क्योंकि बताया गया था कि 13-14 को बारिश के आसार, एक तरह से येलो अलर्ट जो था वो दिया गया था। तो ऐसे में थोड़ा डर भी था कि कहीं एक दिन, जो पिछले कल बहुत प्यारी सी धूप थी, तो बहुत सारे किसान जो हैं वो खेतों में पहुंच गए थे। लेकिन हाँ, डर ये भी सता रहा था कि कहीं बारिश हो गई तो क्या होगा। तो ये कहीं ना मन में उलझन सी रहती है और काम जो है फिर थोड़ा सा हम उसमें परेशानी हो जाती है। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए मौसम साफ है और कब तक साफ रहेगा ये भी बता देते हैं। फिलहाल दोस्तों, इस समय का जो तापमान है धर्मशाला का, वो है 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और मौसम विभाग की तरफ अगर हम जाएं तो दोस्तों, प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। बीते 24 घंटों की हम बात करें तो राज्य के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान में 5 से 11 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। जी दोस्तों, जो पहाड़ी इलाके हैं, जो अलग अलग जगह के अलग अलग मिजाज रहता है मौसम का, तो जहाँ ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, इलाके हैं, तो वहाँ बर्फबारी भी लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। खैर, सर्दियों में बर्फबारी एंजॉय करने वाली नहीं होती, लेकिन हाँ, जो बाहर से घूमने के लिए आते हैं उनके लिए स्नोफॉल जो है वो एक अलग एक पहलू होता है, इंजॉय करने का तरीका होता है। तो ज़रूर दोस्तों, ये भी हमारे पहाड़ों की एक खूबसूरती है। और प्यारे प्यारे से जब धौलाधार कि इन चोटियों पर, चोटियां जो है वो सफ़ेद चादर से ढकी होती हैं, बर्फ़ की चादर से ढकी होती, तो कितनी प्यारी सी लगती है, कितनी सुंदर सी लगती है। तो यही सुंदर सा नज़ारा जो है वो हमारी सुबह को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है, और भी प्यारा बना देता है। इस प्रकृति के नज़ारे को निहारते रहिए, बस प्रकृति की देखभाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि यदि प्रकृति की देखभाल हम नहीं करेंगे तो ये प्यारे प्यारे से नज़ारे जो हैं, जो हमारी आंखों के सामने आते हैं, वो नहीं आएंगे। तो दोस्तों, इसी अपडेट के साथ आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक और खूबसूरत से गीत की ओर। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से।

दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर दिन की अपनी एक खासियत होती है, इतिहास में अपनी एक कहानी होती है। तो आज के दिन की हम बात करें, यानी कि 13 अक्टूबर 2026 की हम बात करें, तो आज के दिन की खासियत कुछ ज़्यादा ही है दोस्तों। क्योंकि जब जोखिम हमारे सामने आ जाते हैं, जब ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ जाती हैं, तो उससे डर भी लगता है, और आने वाले समय के लिए उसके लिए हम थोड़ा सा जो है उसे कैसे रोक सकें, कैसे उस पर काम कर सकें ताकि वो प्रॉब्लम्स हमें फेस ना करनी पड़े, ये जागरूकता हर किसी को होना बेहद ज़रूरी है। और जो दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, मेन उद्देश्य यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके लिए जागरूक किया जाए। तो दोस्तों, आज के दिन जो है वो आप सभी मना रहे हैं आपदा दिवस। तो आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ ही समय पहले बरसात की हम बात करें तो नेपाल में किस तरह की त्रासदी जो है वो फेस करनी पड़ी आपदा के चलते। तो जिसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। जी दोस्तों, प्रत्येक वर्ष जो है वो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, और ये महत्वपूर्ण दिन आपदा जोखिमों को कम करने और लचीले समुदायों के निर्माण के लिए वैश्विक प्रयासों को उजागर करता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम ये तो नहीं कह सकते हैं, जो प्रकृति का एक कह सकते हैं ना कि बुरा समय है वो कब आ जाए उसे तो हम नहीं रोक सकते हैं, जब आपदा आ गई है तो उसे तो नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, हम पहले ही कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि ऐसी चीज़ें हमें फेस ना करनी पड़े। नदियों नालों में हम घर ना बनाएं, नदियों नालों की जो जगह है एक्चुअल में उसे हम ना रोकें, क्योंकि अक्सर हम वही कर रहे हैं आज के समय में, जो पुराने समय की जो चल रही हैं नदियाँ या नाले या कुल्ले हम बात करें तो हम वो बंद कर देते हैं, उन्हें हम बंद करके अपने कंफर्ट के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, जो सुविधाएं हमें चाहिए, हम उसके ऊपर या बंद करके हम वहाँ पे घर बना ले रहे हैं या फिर कुछ भी किसी भी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो जब बरसात के समय में पानी आता है, बरसात के समय में ऑब्वियसली बात है कि पानी ज़्यादा आएगा, तो जब वो कूलें और नदियाँ प्रॉपर तरीके से चलती रहेंगी तो पानी उसमें से निकल जाएगा। पहाड़ी इलाका क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ छोटी छोटी सी नालियाँ हैं वहाँ से पानी निकलता जाता है, तो इसलिए एकदम से तेज़ बहाव जो है वो कहीं भी नहीं देखने को मिलता। लेकिन कुछ समय की हम बात करें, कुछ ये एक दो पिछले साल भी बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस जो थे वो हमने हिमाचल में ही फेस किए देखे, तो उसी के चलते थोड़ी सी सतर्कता, थोड़ी सी सावधानी शायद हमारे लिए बेहतर हो सकती है। कारण कोई भी हो, लेकिन अपनी तरफ से हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे कि प्रकृति को नुकसान पहुंचे। और पानी है दोस्तों, पानी अपनी जगह जो है वो ले ही लेता है, वो आप उसको नहीं रोक पाएंगे और ना ही आज तक कोई रोक पाया है। तो इसी तरीके से जो है हमें अपनी ज़िंदगी की इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को इस खूबसूरत से गीत की ओर। एंजॉय कीजिए अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंचन धर्मशाला और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। और दोस्तों साथ ही आप सभी अपने काम को भी एंजॉय कर रहे हैं और बिल्कुल जो रेडियो के शौकीन है ना दोस्तों, उन्हें चाहे खेती का काम हो, चाहे घर का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, वो ज़रूर रेडियो सेट अपने साथ लेकर ही चलेंगे और चाहे खेतों में ही लगा के सुनेंगे। और दोस्तों जब हम काम करते करते ये बातें और मनोरंजन एंजॉय करते हैं ना, वाह क्या काम, मतलब एक तरह से ना काम करने का जो एक जुनून होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों ये जुनून जो है इसी तरह से बना रहना चाहिए, मन लगा के काम कीजिए और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए काम बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि एक दूसरे को देख कर जो है क्या है अभी के समय की हम बात करें, जो कहते हैं ना कि अपने पुराना बीज जो था धान की हम बात करें, तो वो अब सभी लोगों ने मैक्सिमम उसे गवा दिया है, क्योंकि अब जो है वो जो खरीद के पता नहीं कौन कौन से नंबर के जो हैं धान के बीज जो हैं वो चले हैं, तो उसी के चलते अब बहुत सारे लोगों को दिक्कतें भी सामने आ रही हैं कि अभी तैयार नहीं हुई है फसल और आस पड़ोस की फसल तैयार हो गई है और अब हम अकेले रह जाएंगे, हम भी काट देते हैं ये वो सो। तो मतलब वहाँ पे एक ना वो हड़बड़ी सी कि नहीं हम कच्ची ही काट देंगे, वैसे तो खैर अब समय हो ही गया है, लेकिन हाँ फिर भी इतनी मेहनत हम करते हैं और मेहनत करके फिर हम इस झटपटी में एक दूसरे को देख के अगर ऐसे करेंगे तो फिर हाथ तो कुछ नहीं आएगा, तो थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखिए। तो दोस्तों तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए या दिखावे के लिए काम कभी मत कीजिए, क्योंकि घर के लिए काम कर रहे हैं तो आराम से और शांतिपूर्ण कीजिए। इसी के साथ आप सभी के लिए एक और बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा शॉक देने जा रही हूँ दोस्तों। पहले भी खैर ये बात सामने आई थी, फिर थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन हाँ ये जानकारी आप सभी के लिए बेहद खास है, खास करके त्योहारों के समय में। दोस्तों त्योहारी सीजन में मिठास खोलने की तैयारी कर रहे लोगों को इस बार महंगाई का झटका लग सकता है। चीनी के दाम में एक बार फिर तेजी आने से त्योहारों की खुशियों पर महंगाई का साया मंडराने लगा है। कुछ समय पहले तक करीब 50 रुपए प्रति किलो तक आ चुके चीनी के दाम अब दोबारा से उछाल मारते हुए थोक बाजार में 68 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं, और ऐसे में खुदरा बाजार में चीनी के दाम 70 रुपए प्रति किलो या इससे अधिक होने की आशंका जताई जा रही है। चीनी महंगी होने का सीधा असर मिठाइयों की कीमतों पर पड़ सकता है, जिससे त्योहारों के दौरान लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जी दोस्तों, कोई भी चीज़ जब बदलाव आता है तो सिर्फ एक इंसान को उसका नुकसान नहीं झेलना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को उसके चपेट में आते हैं। तो ये चीनी की बात करें तो सिर्फ जो मिठाई बनाते हैं उनके लिए ही नहीं, जो खरीदते हैं, जो खाते हैं, उनके लिए भी एक शौक की बात है। तो देखते हैं खैर क्या है और किस तरह से रुख करता है ये महंगाई का दौर या महंगाई की मार। तो फिलहाल आइए दोस्तों इसी के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत को मोहब्बतें फिल्म से लिया गया था और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। शिकायतों का हिसाब रखना छोड़ दीजिए, हर बात पर जवाब देना छोड़ दीजिए, जो साथ चलना चाहे चले, किसी को रोकना छोड़ दीजिए, दिल साफ रखिए मगर हर किसी को अपना कहना छोड़ दीजिए। कुछ रिश्ते खामोशी में ही अच्छे लगते हैं, हर एहसास को कहना छोड़ दीजिए, फिक्र कीजिए मगर इतनी नहीं कि खुद को भूलना पड़ जाए, जो आपकी कद्र नहीं करते उनके पीछे चलना छोड़ दीजिए, सुकून चाहिए अगर जिंदगी में तो हर किसी से उम्मीद रखना छोड़ दीजिए। कितनी प्यारी सी बात है दोस्तों, क्योंकि अक्सर हम जिंदगी में किसी के भी साथ जुड़ते हैं तो बहुत सारी उम्मीदें जो हैं वो हमारे साथ जुड़ जाती हैं, लेकिन खुद को खुश रखना चाहते हैं तो एक कहते हैं ना कि लिमिट से बाहर उम्मीदें रखना हमारे लिए थोड़ा सा खराब हो जाता है। और आज के दिन हम बात कर रहे हैं दोस्तों आपदा दिवस की, तो आपदा दिवस पर व्यावसायिक सौदों को से हटकर महत्वपूर्ण जागरूकता और धन जुटाने की पहलों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय, अमेरिकन रेडक्रॉस और डायरेक्ट रिलीफ जैसे संगठन तैयारी और सामुदायिक लचीलेपन पर जोर देने वाले अभियान चलाएंगे। होम डिपो और लोवेज जैसी कई कंपनियां अक्सर जनरेटर, बैटरी और प्राथमिक चिकित्सा किट जैसी आपातकालीन आपूर्ति पर छूट देती हैं। साथ ही दान मिलान कार्यक्रमों के लिए गैर लाभकारी संगठनों के साथ साझेदारी भी करती हैं। स्थानीय सामुदायिक कार्यक्रमों, आपातकालीन योजना पर कार्यशालाओं और आपदा राहत कोष में स्वयं सेवा करने या दान करने के अवसरों पर नजर रखें। 13 अक्टूबर जैसे जैसे जो है हमारी जिंदगी में जागरूकता भरता जाएगा, क्योंकि दिन तो एक ही होता है दोस्तों लोगों को उस बात पे अवेयर करने के लिए, बाकी हमें खुद से मेहनत करनी पड़ती है कि हमने ये दिन सेलिब्रेट किया है और किस उद्देश्य से सेलिब्रेट किया, उसके पीछे क्या बातें हैं, क्यों ये मनाया जाता है। तो वो छोटी छोटी बातें हम हर दिन अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तभी उस सेलिब्रेशन का मकसद, उसका उद्देश्य जो है वो असल में पूरा हो सकेगा। तो फिलहाल दोस्तों आइए इसी के साथ जो है वो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे बहुत ही प्यारे से गीत की, और उसके बाद फिर से वापस आएंगे कार्यक्रम में अपनी ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारे जानकारियों के साथ।

बिल्कुल दोस्तों, यही ज़िंदगी की रीत है और यही जो है एक तरह से हमारी ज़िंदगी की रूटीन भी है। आज आंसू है तो कल हंसी भी होगी, ऐसा तो नहीं है कि किसी की ज़िंदगी में अगर आज आंसू है तो वो उम्र भर के लिए उसी सिचुएशन में रहेंगे। हालात बदलते हैं, थोड़ा समय लगता है, लेकिन हाँ हमें थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत रहती है। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी इंजॉय कर रहे हैं दोस्तों, ढेर सारी बातों के साथ और ढेर सारी जानकारियों के साथ। तो फिलहाल आइए फिर से लेकर चलते हैं आप सभी को एक और म्यूजिकल ब्रेक की, और उसके बाद फिर से वापस आएंगे कार्यक्रम में बातचीत के साथ।

0: सो कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला ढेर सारे मनोरंजन के साथ। और 9:50 हो चुके हैं दोस्तों, और आप सभी जानते हैं कि बातचीत मनोरंजन के साथ साथ जो है कुछ खास जानकारियां भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो आइए लेकर चलते हैं आप सभी को प्रादेशिक समाचारों की ओर।
1: समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल गाजा में करेंगे अनेक उद्घाटन व शिलान्यास। सरकार गांवों के द्वार कार्यक्रम का भी होगा आयोजन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का किया दावा। प्रदेश भाजपा का आरोप, विकास में बाधा बन रहा है राज्य सरकार का कुप्रबंधन। केंद्र से मिले हजारों करोड़ रुपए का सदुपयोग करने में सुक्खू सरकार विफल। कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को तथ्यहीन और राजनीति से प्रेरित बताया। और प्रदेश में फिर से करवट बदलेगा मौसम, आज 5 जिलों में अंधड़ व बारिश का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल यानी 14 अक्टूबर को लाहौल स्पीति जिला के गाजा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे रोंगटोंग में 2 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री छिदांग तंगती से खार तेलिंग और तंजित से हिक्किम सड़क का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा काजा की आइस हॉकी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और सरकार गांवों के द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री 15 अक्टूबर को शिमला लौटेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। मनाली विधानसभा क्षेत्र के कटराई में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश का माहौल पूरी तरह भाजपा के पक्ष में है। जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर विकास कार्य रोकने और आपदा के समय सड़कों की हालत खराब रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार केवल मित्रों के हित साध रही है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों में भाजपा को मिली शानदार जीत का फायदा विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा।
2: सरकार के बारे में बड़ी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रह गई। अभी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के परिणाम निकले, आपने नतीजा देखा, 12 जिला परिषद में से 11 जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है। नगर निगम के चुनाव हुए, 4 में से 3 जगह भाजपा जीती है। तो कांग्रेस बची कहां, छुपाया तो कर दिया है, और आने वाले समय में कसर रही होगी तो उसको विधानसभा के चुनाव में पूरा करेंगे। बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकार।
1: प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर केंद्र से मिल रही वित्तीय सहायता का सदुपयोग करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। धर्मशाला से जारी एक बयान में पार्टी उपाध्यक्ष और विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कुल्लू में तथ्यों के साथ राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे, जिनका मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। परमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन के तहत प्रदेश के लिए करीब 360 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन 15 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों में से केवल एक का निर्माण पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग पार्क के लिए केंद्र ने 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और 225 करोड़ जारी भी किए, फिर भी प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। परमार ने कहा कि केंद्र ने नेशनल हाईवे, रेल परियोजनाओं, एम्स बिलासपुर, जायका स्वास्थ्य परियोजना और किशाऊ बहुउद्देश्य परियोजना से विकास को गति दी है और राज्य सरकार को इन परियोजनाओं पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को तथ्यहीन व राजनीति से प्रेरित बताया है। शिमला से जारी एक संयुक्त बयान में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि 2017 से 2022 तक भाजपा सरकार ने विकास के नाम पर लोगों को केवल झूठे वायदे दिए, धरातल पर कोई महत्वपूर्ण योजना नहीं उतारी। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 90% केंद्र और 10% प्रदेश का हिस्सा है। वर्ष 2021 से 26 के लिए हिमाचल के हिस्से के 112 करोड़ रुपए अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार भ्रष्टाचार पर पूर्ण रोक और पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि जब दिसंबर 2022 में वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभाला तो प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज और लगभग 10,000 करोड़ की कर्मचारियों की देनदारियां थी, और यदि पूर्व भाजपा सरकार सीमित संसाधनों का दुरुपयोग ना करती तो ये स्थिति ना आती। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के

0: चंबा में उन्होंने कहा कि पठानकोट चंबा भरमौर नेशनल हाईवे के सुदृढ़ीकरण और पांगी के लिए स्ट्रेटेजिक सड़क के कार्य में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि चंबा जिले के स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं शुरू कर उनका डिजिटाइजेशन किया जाएगा।
1: डिस्ट्रिक्ट जो है चंबा का, अभी मैं एक और प्रोजेक्ट ला रहा हूँ जिसमें 25 हमारे स्कूल जो है वो डिजिटाइज हो रहे हैं। कल मैं उसका उद्घाटन कर रहा हूँ, 5 साल होंगे और उसके बाद होंगे। इसके बाद मैं पांगी के भी स्कूल जो है 6 सीनियर सेकेंडरी कर रहा हूँ डिजिटाइज।
0: राज्य सरकार की मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रही है। मंडी जिले में भी इस योजना से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
2: योजना के तहत मछली पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकारी अनुदान और तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे युवा अपना कारोबार शुरू कर आय के नए साधन विकसित कर सकते हैं। मंडी जिला के जोगिंद्रनगर उपमंडल के कुंड गांव निवासी उत्तम सिंह ने इस योजना का लाभ उठाकर मछली पालन शुरू किया है। वह इस व्यवसाय से सालाना करीब 50,000 रुपए की अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। उत्तम सिंह ने वर्ष 2025 में 62,000 रुपए की लागत से मछली पालन के लिए तालाब बनाया, जिसके लिए उन्हें सरकार से 49,600 रुपए का अनुदान मिला। ओडिशा में 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्होंने तालाब में मछली के 2,000 बीज डाले और व्यवसाय शुरू किया। अब वह इसे और विस्तार देने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने युवाओं से सरकारी योजनाओं को लाभ उठाकर स्वरोजगार अपनाने का आह्वान किया है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: राज्य के अधिकतर भागों में आज मौसम साफ है। इस बीच राज्य में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से एक बार फिर बारिश व बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में अंधड़ चलने व बिजली गिरने की आशंका जताई है। इस दौरान उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी होने के भी आसार हैं। विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिला में अंधड़ व बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां चंद्रघंटा की आराधना से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन सफेद, पीले, सुनहरे या लाल रंग के वस्त्र धारण कर माता की पूजा करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की सच्चे मन से आराधना करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। पंजाब केसरी की सुर्खी है, हिमाचल के सभी विश्वविद्यालयों में तैनात होंगे नोडल सुरक्षा अधिकारी। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हिमकेयर में अब 10 लाख रुपए तक का इलाज, फर्जीवाड़े पर एआईएस से निगरानी। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, नरसिंह मंदिर की जमीन में फेरबदल से हाईकोर्ट नाराज, अधिकारियों को अवमानना कार्रवाई की चेतावनी। दैनिक जागरण ने खबर दी है, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग, प्रशिक्षु चिकित्सक ने की शिकायत। जबकि अमर उजाला की सुर्खी है, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में प्रथम वर्ष के छात्र से रैगिंग।

सिंह की शिकायत, जांच शुरू। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल गाजा में करेंगे अनेक उद्घाटन व शिलान्यास। सरकार गांवों के द्वार कार्यक्रम का भी होगा आयोजन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का किया दावा। प्रदेश भाजपा का आरोप, विकास में बाधा बन रहा है राज्य सरकार का कुप्रबंधन। केंद्र से मिले हजारों करोड़ रुपए का सदुपयोग करने में सुक्खू सरकार विफल। कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को तथ्यहीन और राजनीति से प्रेरित बताया। और प्रदेश में फिर से करवट बदले का मौसम, आज 5 जिलों में अंधड़ व बारिश का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

दोस्तों प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रचिका के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों हर योगदान शोर नहीं करता और हर एहसान जताया नहीं जाता। कुछ लोग छत की तरह अपना साथ दिखाते हैं, कुछ नीम की तरह चुपचाप पूरा बोझ उठाते हैं। विडंबना ये है कि समाज को अक्सर वही योगदान दिखाई देता है जिसे बार बार गिनाया जाए, जो बिना जताए निभाया जाए उसे धीरे धीरे जिम्मेदारी समझ लिया जाता है। एहसान जताने वाला याद रह जाता है, नीम बनकर संभालने वाला अक्सर भुला दिया जाता है। जी दोस्तों, अगर हम जिंदगी में किसी की भी मदद करें, किसी की भी मुश्किल समय में उनका साथ दें, तो वो बार बार बताना, बार बार उस चीज़ को गिनाना, ये हमारी कमजोरी है। हम क्यों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे कर्म कर जाते हैं और किसी को पता भी नहीं होता। बहुत सारे ऐसे पुण्य के काम करते हैं, तो वो भी इंसान होते हैं और असल में वही पुण्य होता है जो जताया ना जाए, अपने ही द्वारा बताया ना जाए। जब लोग पीठ पीछे कहें कि नहीं, इस इंसान ने वाकई में बहुत कुछ किया, बहुत सारे लोगों को मदद की, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को संवारा, उसे कहते हैं कि ये है असल में एक तरह से दान पुण्य का काम। लेकिन एक छोटी सी हेल्प करके उसे 100 बार गिनाया जाए, जताया जाए, तो वो हेल्प नहीं रही, वो तो एक एहसान हो गया। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। करना है तो मन से हेल्प कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। दिखावे या फॉर्मेलिटी के लिए चीज़ें जब तक आप करते रहेंगे तो आप चेहरे पे चेहरा लेकर घूमते रहेंगे। अपनी असल इमेज को एक दिन आप खुद भूल जाएंगे कि आप रियल में थे क्या और अब क्या बन चुके हैं। तो यही कुछ खास बातें जिंदगी से जुड़ी रुचिका के साथ आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। आइए लेकर चलते हैं इसी के साथ आप सभी को कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। तो एंजॉय कीजिए अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं और बातचीत और मनोरंजन के साथ साथ दोस्तों कुछ बहुत ही खास खास जानकारियां जो कि आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए एक जानकारी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 9 महीने में साइबर ठगों ने हिमाचल प्रदेश के भोले भाले लोगों से लगभग 70 करोड़ ठग लिए हैं। तो दोस्तों देखिए कितनी बहुत बड़ी रकम है एक तरह से। ये साइबर ठग प्रदेश के लोगों को शिकार बना रहे हैं। प्रदेश में हर दूसरे दिन लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। जाने अनजाने में जो है दोस्तों छोटी छोटी सी बातों को लेकर जो है हम इनके झांसे में आ जाते हैं, गलती से ही सही लेकिन हाँ आ जरूर जाते हैं। तो दोस्तों हम इसमें अगर बात करें ना कि कहाँ से कितनी ठगी जो है वो हुई है, तो UPI से हम बात करें तो लगभग 7,97,00,000 जो है वो UPI से ठगी की गई है। और फ्रॉड कॉल की हम बात करें तो लगभग 10,31,00,000 के आसपास जो है वो फ्रॉड कॉल के माध्यम से लोगों से पैसे ठगे गए हैं। शॉपिंग की हम बात करें तो लगभग 1,58,00,000 के आसपास जो है वो शॉपिंग का केस है। अनऑथराइजेशन UPI से लगभग 2,30,00,000। FF बैंक फ्रॉड से 3,17,00,000। फेक लिंक से 1,38,00,000। जॉब फ्रॉड में 1,51,00,000। ATM डेबिट क्रेडिट कार्ड से 1,54,00,000। FF इन्वेस्टमेंट में 3,47,00,000। ऐप इन्वेस्टमेंट से 4,09,00,000 के आसपास जो है ये सारी चीजें देखने को मिली है। तो देखिए दोस्तों कितनी एक तरह से ये शॉकिंग वाली बात है कि हम लोग इनके छोटी छोटी बातों में आ जाते हैं। आजकल क्या ट्रेंड चला है, क्योंकि बहुत सारे युवा जो है वो बेरोजगार हैं, बहुत सारी यहाँ वहाँ अप्लाई कर रहे हैं, और या तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब कर भी रहे हैं लेकिन हाँ उनको ऐसा लगता है कि कुछ पार्ट टाइम जॉब मिल जाए तो हम जो है उससे अर्निंग कर लें ताकि हमारी जो जीवन शैली है थोड़ी सी सुधर सके। तो उसी के चलते हम बिना किसी वेबसाइट को जो है साइट को अच्छे से जाने पहचाने उसके बारे में कोई वो नहीं होता, क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों हम सिर्फ कमेंट्स देखते हैं, तो कमेंट्स वो कई बार खुद से भी डाल देते हैं। जिन्होंने ये ठगी करनी है उन्हें पता है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं और क्या सोच सकते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में जो है खुद के ही कमेंट्स शो कर देते हैं और फिर हमें ऐसा लगता है कि नहीं कमेंट्स तो ठीक ही हैं तो क्यों ना इस पर ट्राई कर लिया जाए। तो जैसे ही हम ऐप को इंस्टॉल करते हैं या किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो उसकी वजह से जो है हमारे बैंक अकाउंट्स जो हैं वो खाली हो जाते हैं। तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना भी चाहते हैं तो पहले किसी भी साइट को अच्छे से देखें, जांचें, परखें, तभी उस पर जो है अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करें, नहीं तो इन ठगी के शिकार क्या पता अगले कौन होंगे और कौन नहीं होंगे। तो दोस्तों ये छोटी छोटी सी बातें, कोई OTP, कोई KYC, कोई मतलब जो भी तरीके, जैसे जैसे नई नई चीज़ें सामने आती हैं हमारी तरफ तो इशू आते हैं लेकिन हाँ उन इश्यूज को यूज़ कर लिया जाता है। जैसे कुछ समय पहले की बात करें तो सिलेंडर की चीज़ें सामने आ रही थी कि सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, तो ये लोग उसका भी इन्होंने फ़ायदा उठाया कि हाँ वो KYC या सिलेंडर की बुकिंग अगर आप करना चाहते हैं तो ये लिंक भेजा है, इस पर क्लिक कीजिए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम सोच भी नहीं सकते, उस समय हम हड़बड़ी में होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें क्या ना करें, और हम फटाफट से उस पर जो है अपनी जानकारी भी शेयर कर देते हैं और उस पर क्लिक कर मतलब उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं या OTP भी शेयर कर देते हैं। तो इन झांसों में बिल्कुल ना आए, कोई भी ऐसी बात हो, कोई भी ऐसी फ्रॉड कॉल हो तो ज़रूर सतर्क रहें, सावधान रहें और अपनी मेहनत की कमाई को सेफ रखें। फिलहाल दोस्तों आइए इसी जानकारी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम के अगले गीत की और इन्जॉय कीजिए अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, कार्यक्रम का ये बेहद प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। और इस प्यारे से गीत के बाद फिर से वापस आते हैं दोस्तों कार्यक्रम में अपनी आज के दिन की कुछ खास बातों की ओर। और खास करके आज के दिन की हम बात करें तो दोस्तों, आपदा दिवस जो है वो आज के दिन 13 अक्टूबर 2026 को आप सभी मना रहे हैं। आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जोखिम जागरूकता और आपदा न्यूनीकरण के वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक दिन के आह्वान के बाद हुई थी। दोस्तों, आज का जो ये दिन है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय जो है वो घर से लचीलापन शुरू होता है। घर वो जगह है जहां लोग रहते हैं, सोते हैं और एक दूसरे की देखभाल करते हैं और आश्रय और सुरक्षा की तलाश करते हैं। कई लोगों के लिए वे कल्याण और स्थिरता के लिए केंद्रीय हैं। हालांकि घरों की योजना, निर्माण, वित्त पोषण और रखरखाव के तरीके ये निर्धारित करते हैं कि जोखिम कम हुआ है या पैदा हुआ है। जब घर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में स्थित होते हैं, आपदा लचीले डिजाइनों को बिना बनाए जाते हैं या बढ़ते खतरों का सामना करने के लिए अपर्याप्त रूप से बनाए रखा जाता है, तो घर वेदता के स्थल पर बन जाते हैं, जिससे जीवन की हानि, विस्थापन और आर्थिक नुकसान होता है। जी दोस्तों, इन जोखिमों का अक्सर महिलाओं, बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों, विकलांग व्यक्तियों, कम आय वाले परिवारों और लिंग विविध समूहों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से जहां आवास, भूमि, कार्यकाल, संसाधनों तक पहुंच, गतिशीलता, देखभाल की जिम्मेदारियों और निर्णय लेने में असमानता बनी रहती है। तो दोस्तों, ये जो आपदा की हम बात कर रहे हैं तो शुरुआत हम कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातों से ही होती है। और मैंने पहले भी कहा कि जब हम जो एक प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो प्रकृति की देन है हमारे लिए, उसे हम छेड़छाड़ करेंगे, उसे डिस्टर्ब करेंगे, उसे परेशान करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका भुगतान तो फिर हमें करना ही पड़ेगा। जिस तरह से अभी हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं और उस भागने के साथ साथ हम आगे पीछे कुछ नहीं देखते, हम किसी को नुकसान पहुँच रहा हो, पशुओं को नुकसान हो रहा है, पक्षियों को नुकसान हो रहा है, जब हम जंगलों को काट रहे हैं तो वहाँ उनके घोंसलों को जो है वो जगह नहीं है बनाने के लिए। पहले घरों में भी बनाए जाते थे, लेकिन अब तो घरों में हमने वो सिस्टम बंद कर दिए, अब तो घरों में वो चीज़ें हैं नहीं। तो कहीं ना कहीं तो वो रहेंगे, उनके जो जगह है रहने की वो पेड़ों के ऊपर घोंसले बनाकर रहने की है। यदि हम पेड़ काट देंगे तो वो कहाँ रहेंगे, किस तरह से रहेंगे और कैसे अपनी ज़िंदगी को वो पूरा करेंगे। तो दोस्तों, जहाँ हम अपनी सुविधाओं की बात करते हैं, वहाँ हमें हर किसी की ज़िंदगी के बारे में सोचना बेहद ज़रूरी होता है। जो पशु हैं आज वो एक तरह से सड़कों पर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, न खाने को न रहने को छत, इस तरह से जो है आज का समय चल रहा है। और यही हालात रहे तो न जाने आने वाले समय में इंसानों के साथ क्या होगा। हो भी रहा है, लेकिन हाँ, आगे इससे भी बुरा हो सकता है यदि हम अपने कर्मों पे थोड़ा सा ध्यान ना दें। तो फिलहाल दोस्तों, ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं ज़िंदगी से जुड़ी, हमारी दिनचर्या से जुड़ी हुई, समाज से जुड़ी, देश से जुड़ी। यदि हम अपने आसपास को एक सही दिशा की ओर लेकर जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ी बात है, औरों के लिए एग्जाम्पल होगा, औरों के लिए वो एक प्रेरणादायक बात रहेगी। लेकिन अगर हम भी वैसा करेंगे तो हम कैसे अपने आप को एक अलग पहचान दे पाएंगे, कैसे अपने आप को बेहतर बना पाएंगे, बस यही सोचना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल ज़रूरी ये है कि कार्यक्रम में बातचीत के साथ साथ प्यारे प्यारे से गीत जो कि आप सभी तक पहुंचाए जा रहे हैं वो भी बेहद ज़रूरी हैं। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों 91.2 MHz पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त

आयोजन का इंतजार करती रह गई, लेकिन पर्यटन विभाग अपनी निद्रा ही त्याग नहीं पाया। एशिया की सबसे बेस्ट, दुनिया के सबसे ऊंची और रैंकिंग में विश्व की दूसरी वेस्ट साइट पर नजरअंदाजी की ऐसी परत चढ़ रही है कि ना विकास हो पा रहा है और ना ही प्रतियोगिता। वीर विलिंग टेक ऑफ पॉइंट की ऊंचाई 2400 मीटर है, जबकि दुनिया की नंबर वन साइट तुर्की की ओलुडेनिस की हाइट 1960 मीटर है। बिलिंग में धौलाधार की सुंदरता, लंबी उड़ान, स्पेस, बेहतर लैंडिंग साइट दुनिया भर के रोमांच को आकर्षित करती है। ये साइट मई 1984 में दुनिया के नक्शे पर उभरी थी और सबसे बड़ा पहला आयोजन हैंग ग्लाइडिंग फ्लाइंग कंपटीशन हुआ था। उस समय 13 देशों के 43 पायलट शामिल हुए थे। जी दोस्तों, तो ये एक बेहद खास और एक तरह से गंभीर सी जानकारी है, शॉकिंग तौर पे ही है कि जब इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी जगह, लेकिन हाँ, हो सकता है मौसम की वजह से भी शायद नज़रअंदाज की या किसी भी तरह से, रीजंस तो खैर क्या होंगे क्या नहीं होंगे वो तो प्रशासन अच्छे ढंग से समझते होंगे या किस भी तरह से, लेकिन हाँ, जब बाहर से लोग घूमने आते हैं तो जब इसे एक और ऊंचे पड़ाव तक लेकर जाना होता है तो कहते हैं ना कि हर कोई चाहता है कि उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट मिले, थोड़ा सा सम्मान मिले, ताकि वो और मेहनत करके उस जगह को और खूबसूरत बनाने में अपनी लगन लगाएं और उसे पूरे देश विदेश में चर्चित माना जाए। वो पूरे दिल से एफर्ट्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है दोस्तों सपोर्ट की, गाइडेंस की। तो खैर, इसी जानकारी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक और प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर। तो एंजॉय कीजिए अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों अलका याग्निक सोनू निगम की आवाजों में आप सभी सुन रहे थे कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत जिसे लिया था रन मूवी से। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। दोस्तों कहते हैं कि वक्त सब बदल देता है, लेकिन असल में देखा जाए तो वक्त सिर्फ और सिर्फ मौका देता है। बदलना इंसान को पड़ता है, वही सुबह वही रास्ते वही लोग। बदलता है तो बस देखने का नजरिया, हार के बाद उठने का हौसला और खुद से किए हुए वादे, क्योंकि वक्त किसी की तकदीर नहीं लिखता, वो तो बस एक खाली पन्ना देता है। कहानी कैसी होगी ये कलम पकड़ने वाला तय करता है। जी दोस्तों, हमारी जिंदगी एक खाली पन्नों के किताब की तरह है, जिसके हर एक पन्ने पे हम क्या लिख रहे हैं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को सजा रहे हैं, वो हमारे हाथों में है। यदि हम पुरानी उन बिखरी परेशानियों वाली बातों में उलझे रहेंगे तो वो पन्ने उसी से भरते जाएंगे, और ज़िंदगी की वो पूरी किताब कब आप उन दुख भरे पन्नों से ही भर देंगे कोई पता नहीं। इसलिए हमेशा खुश रहिए और जिंदगी को थोड़ा बेहतर तरीके से जीने की कोशिश कीजिए। फिलहाल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो दोस्तों इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए दोस्तों इस बातचीत को फिर से लेकर चलते हैं एक बहुत ही खास जानकारी की ओर। तो आइए जानते हैं एक बहुत गंभीर तो क्या बोल सकते हैं, लेकिन आज के समय में शायद ये बेहद ज़रूरी है और सतर्कता से जुड़ी है, तो जानते हैं इस प्यारी सी खूबसूरत सी जानकारी को। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर है। अब ऐसे मरीजों को इलाज और रूटीन चेकअप के लिए बार बार अस्पताल के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। प्रदेश में जल्द ही एल्डरली एंड पॉलिएटिव केयर कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर द्वार जाकर मरीजों का इलाज और उनकी देखभाल करेंगी। जी दोस्तों, मुख्यमंत्री जल्द ही पूरे प्रदेश में इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लॉन्च करेंगे। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य सचिव ने हाल ही में बैठक कर इस योजना की तैयारियों की समीक्षा की है और इसे धरातल पर उतारने का कार्य अब अपने अंतिम चरण में है। योजना के तहत स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर इन मरीजों के स्वास्थ्य का आकलन करेंगे और उन्हें जरूरी चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराएंगे। जी दोस्तों, तो बहुत ही ये खास बात है और बहुत ही राहत भरी खबर है, खास करके उन बुजुर्गों के लिए जिनका सहारा कोई नहीं है, सहारा होते हुए भी बेसहारा है। कुछ इस तरह से भी चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि पहले वृद्धाश्रमों में जो है बहुत कम बुजुर्ग देखे जाते थे, लेकिन आज के समय में जितनी फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, जितना पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सुख सुविधाओं से भरी ज़िंदगी उन्हें देने की कोशिश कर रहे हैं, उतने ही बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम तक पहुंचा रहे हैं। कितनी हैरानगी की बात है ना दोस्तों, कि पेरेंट्स बच्चों की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं कर जाते हैं, कितनी ही मुश्किलें झेल जाते हैं, कितने ही न जाने जो जुल्म है वो सह जाते हैं, लेकिन फिर भी आज के समय में बच्चों के लिए वो जैसे ही बड़े हो जाते हैं, बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, एक वेल सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, तो माँ बाप उन्हें बोझ

लगने लग जाते हैं। लेकिन उन्हीं माँ बाप की धन दौलत जायदाद जिसके लिए वो एक दूसरे की जान तक लेने के लिए उतारू हो जाते हैं, तो वो भी उन माँ बाप की ही है जिन्हें वो बोझ समझ रहे हैं। यदि वो उन्हें बोझ समझ रहे हैं तो फिर वो धन दौलत भी किस काम की, फिर उसे भी छोड़ दीजिए, यही कह सकते हैं। लेकिन हाँ, ये अपनी अपनी सोच है, अपना अपना नज़रिया है, लेकिन आज के समय में ये बहुत सारी बातें हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है, एक तरह से कह सकते हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि घर घर जाकर जो है बुज़ुर्गों को और मरीजों को जो है वो देखा जाएगा, जिससे कि कोई भी बीमारी में ऐसे खुद को भी वो बोझ ना समझने लग जाएं और न जाने किस तरीके से वो अपने घर में रह रहे हैं बिना दवाई के, बिना किसी को बताए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों फेस होती हैं। लेकिन हाँ, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि समय एक जैसा नहीं रहता है, कल को हम भी उसी स्टेज में आने वाले हैं। आज जिस स्टेज में हमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया है या छोड़ रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो कल को हमारे बच्चे जो ये देख रहे हैं वो भी उसी तरह से ना हमारे साथ करें, क्योंकि कहते हैं ना, बच्चे तो जो देखते हैं वही करते हैं। तो उनके सामने जैसा वातावरण आप क्रिएट करोगे आगे चलकर, वो आपके साथ भी वैसा ही करेंगे। तो ऐसा माहौल ही ना बनाएं जिससे कि आपको बाद में आगे चलकर मुश्किलें फेस करनी पड़े। तो दोस्तों आइए इसी के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, खबर छुपाई जाती है, अफवाह उड़ाई जाती है, ये वो दौर है जनाब जहां सच्चाई दबाई जाती है। कहानी कुछ और होती है और सुनाई कुछ और जाती है। चेहरे पर मासूमियत रहती है, पीठ पीछे दुनिया सजाई जाती है। जो सच जानते हैं वो अक्सर खामोश रहते हैं और झूठ बोलने वालों की महफिल सजाई जाती है। इसलिए हर सुनी बात पर यकीन मत कीजिए। आजकल सच से पहले कहानी बनाई जाती है और कहानी भी बहुत तरीके से, बहुत प्यार से बनाई जाती है और उस कहानी पे हम अक्सर विश्वास भी कर लेते हैं और जाने अनजाने में झूठ को सच मान बैठते हैं। तो कभी भी इन बातों को इतनी अहमियत मत दीजिए कि अपना ही उसूल, अपनी ही जो वास्तविकता है, कहीं ना कहीं पीछे छूट जाए। दोस्तों, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं और आइए इसी के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इंजॉय कर रहे थे कार्यक्रम गढ़वानिंग धर्मशाला। जी दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा ये सफ़र रहा और आज के सफ़र में आप सभी जुड़े थे अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी जानकारियों के साथ और ढेर सारे मनोरंजन के साथ। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी ने ज़रूर इंजॉय किया होगा और अब उस मोड़ पे आप पहुँचे हैं दोस्तों जहाँ ये कहना ही पड़ता है ना चाहते हुए भी कि अब अलविदा लेने का समय आ चुका है। जी दोस्तों, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये सफ़र रहता है और बहुत प्यारा सा रहता है क्योंकि आप सभी का साथ बहुत प्यारा सा है, बहुत खूबसूरत सा है और इसी प्यार को देखकर मन करता है ना कि फिर दोबारा आप सभी के साथ जुड़े, तो बिल्कुल जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति अपनी रेडी दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की, फिर होगी मुलाकात एक नई बातचीत नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला गुंज

नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। जय माता दी।

0: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
1: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
0: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
2: आप चिंता ना करें।
0: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
2: और ये का है, पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
3: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज। काहे नहीं सुनते आप हमारी?
4: तुम क्या खड़ा हो?
3: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाएं, पक्का?
3: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
6: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
7: दहेज मुक्त बिहार, संकल्प हमारा।
8: शालू बात माने ना तो करवा ले।
9: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
8: अरे वाह, नौकरी लग गई
9: जी,
8: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
9: अरे काका भी है।
8: अच्छा,
9: काका लड्डू खाओ।
10: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ की नौकरी?
9: बैंक में काका।
11: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
12: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
11: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
9: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
13: बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
12: क्यों भाई?
13: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
12: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
14: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
9: जी।
15: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
16: वही असली तरक्की।
15: एक कदम स्वच्छता की ओर।
17: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता है। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं, बस दूर जाना चाहता है। और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि कुछ

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते, उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं, वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
2: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
5: क्यों, क्या हुआ?
2: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
5: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ।
6: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
7: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
6: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया?
7: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। जय माता दी।

0: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
1: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
0: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
2: आप चिंता ना करें।
0: चिंता का है कि? हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का है? ये तो खोटा सिक्का है।
2: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
3: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
4: तुम क्या खड़ा हो?
3: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाए पक्का?
3: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
6: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
7: दहेज मुक्त बिहार, संकल्प हमारा।
8: शालू
9: बात माने ना तो करवा ले।
8: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
9: अरे वाह, नौकरी लग गई
8: जी।
9: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
8: अरे काका भी है।
9: अच्छा,
8: काका लड्डू खाओ।
10: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
8: बैंक में काका।
11: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
12: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
11: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
8: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
13: बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
12: क्यों भाई?
13: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
12: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
14: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो
8: जी।
15: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
16: वही असली तरक्की।
15: एक कदम स्वच्छता की ओर।
17: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं बस दूर जाना चाहता है, और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा, देश जीतेगा।
1: टीवी हारेगा, देश जीतेगा।
2: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
3: मामा, नो शेयरिंग।
2: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
3: कौन था?
2: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
3: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
2: स्मार्ट गर्ल।
3: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
2: याद है ना, नो शेयरिंग।
3: मामा,
4: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
5: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
3: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
6: क्यों, क्या हुआ?
3: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
6: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ।
7: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
8: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
7: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया।
8: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और रूमा के साथ जी। तो आप सभी को हम दोनों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छे हैं आप सभी, अपने हेल्थ का बहुत ही अच्छे से ध्यान जरूर रख रहे होंगे। एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं कार्यक्रम की एक और कड़ी आप सभी के समक्ष रखने के लिए जी। दोस्तों, तो आज भी एक बहुत ही खास जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। और क्या जानकारी रहने वाली है आज के इस कार्यक्रम में, तो सबसे पहले तो कार्यक्रम का नाम बता देते हैं।
1: बिल्कुल रुचिका, क्योंकि कार्यक्रम के नाम के साथ ही हमारी जो जानकारियां हैं वो भी जुड़ी हुई हैं। कार्यक्रम है मेरे हौसलों की उड़ान, और हमारे हौसलों में उड़ान आती है हमारे दोस्तों के साथ जुड़ के, और नई नई जो हम जानकारियां साझा करते हैं अपने दोस्तों के साथ उनके साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि हौसलों में जो है वो उड़ान बरकरार रहनी चाहिए। हिम्मत हमारी नहीं टूटनी चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो। जब हम परिस्थितियों का डट के सामना करते हैं, हौसले के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में नए आयाम गढ़ते जाते हैं और बहुत सारी मुश्किलों का हम आसानी से हंसते हुए सामना कर लेते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा रूमा जी ने। दोस्तों, मुश्किलें किसकी जिंदगी में नहीं आती हैं, हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन उन्हें कैसे फेस करना है, कैसे उनका सामना करना है, ये हमें हर दिन सीखने की जरूरत होती है। और ये जो मुश्किलें आती हैं हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक होती हैं, हमें सबक देकर जाती हैं, हमें अनुभव देकर जाती हैं, हमें कोई ना कोई सीख जरूर देकर जाती हैं। लेकिन उस समय हमें वो मुश्किलें एक तरह से बोझ लगती हैं, बहुत ऐसे चिड़चिड़ापन, एक तरह से हम ना खुद से ही इरिटेट हो जाते हैं कि क्यों हमारे ही साथ ऐसा कुछ होता है। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता
1: है। बिल्कुल रुचिका, और हम बात कर रहे हैं सामान्य हम नॉर्मल जीवन की मुसीबतों के बारे में, जो भी उसमें रुकावटें हैं उनके बारे में। लेकिन अगर हम सामान्य जीवन जी रहे हैं रुचिका, हम अगर आम व्यक्ति की तरह बात करें, तो हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं और हम उन मुसीबतों का डटकर सामना भी करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है हमारे समाज में एक ऐसा तबका भी रहता है जो किसी ना किसी

0: चैलेंज का सामना कर रहा है, जैसे कि फिजिकल चैलेंज, कोई शारीरिक रूप से दिव्यांग है, किसी को कोई मंद बुद्धि है, या इस तरह के कई प्रकार के व्यक्ति जो है समाज में जो फिजिकल चैलेंजेस को झेल रहे हैं और समाज के साथ दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलने में जिनको थोड़ी बहुत क्या बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं, तो उन लोगों का क्या होगा अगर हम लोग ही छोटी छोटी मुसीबतों में हिम्मत हार देंगे, तो उन लोगों के सामने तो बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो उन चीजों से वो कैसे निपटेंगे ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। और देखो कई बार जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं ना जो शारीरिक रूप से अक्षम है, दिव्यांग है, या किसी भी प्रकार की शारीरिक कमी को झेल रहे हैं, उसके साथ भी वो कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं इस तरह के जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं और उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है अपनी मेहनत के दम पे, अपनी एजुकेशन के दम पे, और उनको जो परिवार का समाज का सहयोग मिला है उसके दम पे, तो अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जब हमें हमारी समस्याएं बड़ी लगती हैं तो उनके सामने तो समस्याओं का पहाड़ खड़ा रहता है।
1: बिल्कुल सही कहा रूमा जी ने दोस्तों, क्योंकि हम सभी की जिंदगी ऐसे ही चल रही है, उतार चढ़ाव आने जरूरी भी है लेकिन हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम हमेशा बात करते हैं महिलाओं के अधिकारों की, हम बात करते हैं पुरुषों के अधिकारों की, हम बात करते हैं लेकिन बच्चों के अधिकारों की भी हम बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, छूट जाता है,
0: बिल्कुल
1: वो हम भूल जाते हैं कई बार। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में ये बहुत ही खास बातचीत आप उन्हीं से संबंधित जानेंगे, यानी कि दिव्यांग जन जो बहुत ही जिंदगी में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो कार्यक्रम में हमने शुरुआत में ही कहा कि मुश्किलें तो हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन ये इन्हें वैसे भी कहते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं ये, फिर भी लेकिन कहीं ना कहीं उनमें एक कोई सपोर्ट ना करे, उनकी एक प्रॉपर केयर ना करे, उन्हें एक तरह से मोटिवेट ना करे, तो उनके अंदर कोई ना कोई एक हलचल सी चलती रहती है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक टूटता हुआ सा महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल रुचिका, अगर हमारे जिस्म में किसी प्रकार की कोई कमी है जो हमारी वजह से नहीं है, नेचर की वजह से है, तो हम खुद भी कितना परेशान हो जाते हैं। और सोचिए जो व्यक्ति दिन रात इस तरह की चीजों का सामना कर रहा है, कोई उसको ताने मार रहा है, कहीं उसको आगे बढ़ने का मौका इस वजह से नहीं मिल पा रहा है कि वो फिजिकली चैलेंज्ड है, तो कितना सारा तकलीफें हैं उन लोगों के जीवन में, इस चीज की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और आपने कहा ना कि इन लोगों के बारे में हम सोचते नहीं है, कई बार मैंने देखा है कि हम देखकर भी इन लोगों को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अपाहिज है या हैंडीकैप्ड है या दिव्यांग है, तो इस व्यक्ति को क्या ही कर सकता है ये, और हम भी उसकी जो बेसिक जरूरतें हैं उससे उनको महरूम कर देते हैं, उनको पीछे कर देते हैं। परिवार में दो बच्चे हैं और एक बच्चा हमारा अगर दिव्यांग है, किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता है उसमें, तो हम उस बच्चे की जरूरतों की ओर कम ध्यान देते हैं, और जो बच्चा ठीक है उसके लिए हम हर एक प्रकार की सुविधाओं का भी प्रबंध करते हैं, और हम घर परिवार में ही ऐसे बच्चों के साथ जो है वो भेदभाव करते हैं। लेकिन रुचिका मुझे लगता है हम हर बार ही हम बहुत ही गंभीर विषय पे बात करते हैं, हमारे दोस्त भी हमारी बातें सुन के थोड़ा सा गंभीर हो जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि ज्यादा ही गंभीर हो जाएं, और सीरियसनेस किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है,
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना पहले से इस माहौल को हल्का फुल्का कर लिया जाए, उसके बाद ही आगे की बात को बढ़ाया जाए।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो आप ये सब तो समझ ही चुके हैं कि आज के कार्यक्रम में हम कौन सी खास बातचीत करने वाले हैं, तो ये उन सभी के लिए बहुत ही खास है जिनके अधिकार उन तक पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, उनके लिए भी अधिकार है, कानूनी एक तरह से उनके लिए योजनाएं हैं, वो किस तरह से अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, कैसे जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके सहारे भी उम्मीद है, जिंदगी है, तो वो ऐसे निराश होकर या तो हिम्मत हार कर बैठने वालों में से नहीं, बल्कि जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं और जिंदगी के साथ लड़ सकते हैं। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम फिर से मिलते हैं आप सभी के साथ इस प्यारी सी बातचीत के साथ।

0: तो रुचिका जी, आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाया है और बहुत ही अच्छा लगा गीत सुन के। तो मुझे लगता है कि अब हमें देर ना करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा रूमा जी आपने। एक बार फिर से अपने दोस्तों को बता देते हैं जो कि अभी अभी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, तो वो सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान। और इस उड़ान को, यानी कि इस उड़ान का सभी को हक है, सभी को राइट है जिंदगी में आगे बढ़, इस उड़ान के साथ आगे बढ़ने में। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में हम बहुत ही खास बातचीत कर रहे हैं दोस्तों, दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में, क्या क्या ऐसी योजनाएं उनके लिए, क्या क्या राइट्स उनके लिए हैं। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बात करते हैं इस खास बातचीत में। तो रूमा मैम, सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि ये दिव्यांग जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, और आज भी क्या समाज में दिव्यांग व्यक्ति हैं उन्हें आज भी क्या भेदभाव की नजर से देखा जाता है, या उनके लिए कोई ऐसी समान इक्वल मतलब नजरिए से उन्हें एक समान समझा जाता है।
0: रुचिका जी, पहले तो मैं बात करूंगी दिव्यांग है कौन
1: जी।
0: तो जो भी व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम है, चाहे वो मूक है, बधिर है, उनको आंखों की कोई प्रॉब्लम है, या फिर वो पोलियोग्रस्त है, किसी एसिड अटैक से पीड़ित जो व्यक्ति है उसका अंग नहीं है, और सर्वल पॉलिसी के लोग हैं, मंदबुद्धि व्यक्ति हैं, तो इस तरह के लोग जो अपने रोजमर्रा के रूटीन के काम अपने फिजिकल चैलेंजेस के कारण कम्प्लीटली अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को दिव्यांग जनों की श्रेणी में रखा गया है। यानी वो व्यक्ति जो किसी ना किसी शारीरिक अक्षमता से पीड़ित है, उसमें शारीरिक रूप से जैसे किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है। और आपको ये बात बताऊं मैं, आज 1995 में जो अधिनियम था दिव्यांग जनों के लिए, उसमें 7 कैटेगरी को ही रखा गया था दिव्यांगता में, दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया था। उसमें पोलियोग्रस्त थे, मूक और बधिर थे, जिनको दिखाई नहीं देता था, या जिनका अंग किसी वजह से कट चुका था, या फिर जो किसी आपदा में शिकार होके अपना शरीर का कोई हिस्सा गवा चुके थे और वो अपना काम आसानी से नहीं कर पाते थे। लेकिन इन लोगों की जरूरतों को देखते हुए सन 2016 में एक अधिनियम पारित किया गया था दिव्यांग जनों की सुरक्षा के लिए, उनको सहायता प्रदान करने के लिए। 2016 में दिव्यांग जन अधिनियम एक्ट जो भी हमारे इसमें इन्फोर्समेंट में आया, तो उसमें ये जो दिव्यांगता की 7 श्रेणियां थी इनको बढ़ाकर अब 21 हो गई हैं, और ये सब संयुक्त राष्ट्र की जो इकाई है उन्हीं के साथ मिलकर इन श्रेणी के लोगों को भी दिव्यांगता में रखा गया। क्योंकि आपने पूछा ना कि क्या इनके साथ मतभेद होता है, बिल्कुल होता है। मैंने पहले ही कहा था कि घर में भी अगर 2 बच्चे हैं, एक दिव्यांग है, स्पेशल नीड की उसको जरूरत है, और एक बच्चा जो बिल्कुल ठीक है, हम क्या करते हैं, स्पेशल नीड वाले बच्चे को उतनी केयर नहीं दे पाते, ना ही उसकी जरूरतों का ध्यान रख पाते हैं। लेकिन जो बच्चा ठीक है, हम उसके लिए दुनिया की हर एक खुशी उसके कदमों में लाके देने को तैयार हैं, उसको आगे बढ़ने के लिए मौका दे रहे हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई जितना भी माता पिता से संभव हो पाता है वो हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि माता पिता एक दिव्यांग बच्चे में और दूसरे बच्चे में भेदभाव करते हैं, लेकिन हमारे समाज की एक सोच है, एक सामान्य मनुष्य की तरह अगर मैं बात करूं तो हम ये सोच रखते हैं दिव्यांग ही तो है, दूसरों पर निर्भर ही तो रहेगा, तो इसके लिए ज्यादा करने की क्या जरूरत है। तो उस बच्चे के माता पिता जो है वो उसके लिए जो रोटी, कपड़ा, मेडिकेशन जो भी है जरूरी चीजें उसको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये चीज हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि उस बच्चे में, अगर वो दिव्यांग है, किसी भी प्रकार की उसको अक्षमता है, अगर मान लो दिमागी तौर पर ही बच्चा बिल्कुल चैलेंज्ड है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, फिर भी जो एक थोड़ा सा सामान्य बच्चा है जो समझ सकता है, उसके लिए भी हम भेदभाव करते हैं। तो भेदभाव तो होता है, हम परिवार में भेदभाव करते हैं और सोसाइटी भी ऐसे लोगों को हीनता की दृष्टि से देखती है, जो कि सरासर गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा रूमा जी आपने, क्योंकि अक्सर कई बार तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चों के लिए वैसे तो सब कुछ ही करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का जिंदगी है वो बेहतर से बेहतर हो। अब कोई अगर इस मतलब कमी के साथ जिंदगी में आया है तो उसमें उसकी भी क्या गलती है, है ना। एक तो एक ये जिंदगी का पार्ट है हमारी, लेकिन हम उसे हीन भावना से देखें, ये शायद हमारा एक नजरिया या हमारी मानसिकता में कमी हम जरूर बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो समाज की बातें होती हैं, जो समाज घर वाले मतलब पेरेंट्स उन्हें बढ़ चढ़कर उनको सपोर्ट भी करते हैं, उनके जो भी नीड्स हैं वो पूरी भी करते हैं, लेकिन सोसाइटी की बातें कई बार उन्हें ना एक तरह से तोड़ कर रख देती
0: है। बिल्कुल, हम उनको ताना मार रहे हैं, उनको कई प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा फिजिक है, भगवान ने हमें बनाया है, सामान्य मनुष्यों को भी अगर उसके बनावट पे, उसकी शारीरिक संरचना पे किसी प्रकार की बात होती है तो हम भी कितना हर्ट हो जाते हैं। मैक्सिमम हमने अपने किसी पिछले कार्यक्रम में भी देखा था कि महिलाओं को मोटी काली या कई तरह की बातें कहकर जब चिढ़ाया जाता है तो कितना अवसाद जो है वो हमारे मन में आ जाता है। तो ये लोग जो तो शारीरिक रूप से अक्षम है, कई सारी मानसिक और शारीरिक जो चैलेंजेस है उनको फेस कर रहे हैं, अगर उनके सामने हम बार बार इस तरह का उनको जताते हैं तो जाहिर सी बात है वो अपना गुस्सा अंदर ही अंदर पी जाते हैं और उनकी जो समस्याएं हैं वो कम होने की बजाय और बढ़ जाती हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, क्योंकि समय है और समय कब बदल जाएगा कोई नहीं जानता। आज किसी और के साथ है और हम हंस रहे हैं तो कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और ये भी ध्यान में रखिए कि जो भी बच्चा है या कोई बड़े है वो पहले ही एक तो उस बीमारी से ग्रसित है, उसको फेस कर रहे हैं, लेकिन साथ में आपके ताने, आपका वो नजरिया, आपकी वो मानसिकता, तो सोचिए उनमें अंदर ही अंदर कितनी घुटन महसूस होगी, वो कहीं ना कहीं खुद को बोझ समझने लग जाएंगे और जिंदगी से हार मान लेंगे। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि हमारी इंसानियत में ये चीजें मैटर करती हैं। तो फिलहाल अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और मैम, आपने बात की 2016 अधिनियम की, तो इसकी ऐसी कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं जो कि दिव्यांग जन के लिए बनाई गई हैं या उनके लिए ये बेनिफिशियल है?
0: ये मेरे हिसाब से तो रुचिका, ये बहुत ही अच्छा अधिनियम जो है, जो हमारे संविधान के उसमें से बहुत सारे जो प्रावधान है वो इसमें लिए गए हैं और दिव्यांग जनों की विकास के लिए, उनकी सहायता के लिए इस अधिनियम में जो है वो बहुत सारे चेंजेस किए गए। सबसे पहले तो बड़ा चेंज ये किया गया था कि इससे पहले हम जो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति होते थे उनको अपंग, अपाहिज या और भी कई तरह के नामों से पुकारते थे, तो इस अधिनियम में ये सुनिश्चित किया गया है कि अब किसी भी कागज पे, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन है या कोई भी वो है, ऐसे लोगों को अपाहिज या अपंग नाम से संबोधित नहीं किया जाएगा। इसके लिए विशेष शब्द का इस्तेमाल किया गया है, दिव्यांग जन। और इस एक्ट में जितने भी हमारे संविधान में वर्णित हमारे मौलिक अधिकार हैं वो सभी जिस तरह से सामान्य व्यक्ति के ऊपर वो लागू होते हैं, वैसे ही इन सभी जो भी व्यक्ति हैं, महिला, पुरुष, बच्चा, जो भी दिव्यांग है, उनके लिए बराबर रूप से लागू होते हैं, इनको सुनिश्चित किया गया है। इसकी एक विशेषता ये भी है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की शारीरिक अक्षमता को झेल रहा है, अगर वो किसी रोजगार के लिए सक्षम है तो उसको उसके शारीरिक बनावट या शारीरिक परिस्थिति को देखते हुए उस रोजगार से दूर नहीं किया जा सकता है। इनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए, का जो सम्मान है उसको बनाए रखने के लिए हम सबको मिलकर इस अधिनियम के तहत जो है वो बाउंड किया गया है। हम किसी को भी उसकी शारीरिक अक्षमता को लेकर पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं और इसका एक जो मेन मकसद वो था कि अगर कोई दिव्यांग जनों के अंदर हीन भावना को बढ़ाता है, जैसे उनको कई प्रकार के टॉन्टिंग कर देते हैं हम, कमेंट्स पास कर देते हैं, तो उसमें सजा का भी प्रावधान अब जो है वो किया गया है।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों इसके बारे में हम और भी बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तो मिलते हैं आप सभी से इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन, धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं और मेरे हौसलों की उड़ान कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं। और बहुत ही खास बातचीत आज के कार्यक्रम में हम कर रहे हैं दोस्तों दिव्यांगजन अधिकारों के बारे में, उन लोगों के बारे में जो कि कहीं ना कहीं अपने आप को एक तरह से अधूरा महसूस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट मिल जाए, एक प्रॉपर मोटिवेशन मिल जाए तो वो जिंदगी में बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ते हैं और हर एक फील्ड में आगे अपना नाम चमकाते हैं, यानी कि निखारते हैं। लेकिन जरूरत होती है थोड़ी सी गाइडेंस की और सपोर्ट की। तो आइए बढ़ते हैं अपनी बातचीत में आगे और बात करते हैं रूमा जी कि जो ये जो दिव्यांग व्यक्ति हैं इनके लिए सबसे पहले ये कि ये जो दिव्यांगता है ये कितने प्रकार की होती है, और दूसरी बात ये कि इनके लिए कानून, मतलब कि कौन कौन से कानून जो है बनाए गए हैं इनके अधिकारों के लिए, क्योंकि हर किसी के अपने राइट्स हैं, अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं तो इनके लिए भी अपने राइट्स होंगे। तो उन्हें ये जानना बहुत जरूरी है उनके लिए कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने लिए अगर कोई उन्हें तानों को फेस करना पड़ता है या कहीं आगे बढ़ने से रोका जाता है तो वो कैसे अपने लिए आवाज उठा सकते हैं, कैसे कानून की सहायता ले सकते हैं, ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं उनके लिए।
1: बिल्कुल रचिका, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि 1995 में जो दिव्यांग जनों के लिए कानून था उसमें 7 श्रेणियों को जो था वो उसमें रखा गया था दिव्यांगता में। लेकिन 2016 में जब ये नया अधिनियम दिव्यांग जनों के लिए आया तो इसमें जो कैटेगरीज थी उनको एक्सपेंड किया गया। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज जो है वो 7 से बढ़कर जो है वो 21 हो गई है। उसमें अंधापन है, कम दृष्टि है, उसके बाद कुष्ठ रोग के कारण भी कुछ लोग जो है वो अपाहिज हो जाते हैं। कुष्ठ रोग से ठीक हो जाने के बाद जो भी शारीरिक चैलेंजेस आते हैं तो कुष्ठ रोगियों को भी इसमें शामिल किया गया है। और सुनने और बोलने में जो कठिनाई आती है उसको, लोकोमोटर विकलांगता जैसे हड्डियों के रोग हैं, जैसे पोलियोग्रस्त व्यक्ति हो गए या किसी और बीमारी के कारण हड्डियों की कोई प्रॉब्लम हो गई है, हड्डियों की ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसमें लोकोमोटर विकलांगता भी है। बोनापन, जिसको हम अक्सर हमें कोई छोटा व्यक्ति दिख जाता है तो हम उनका मजाक उड़ाते हैं। और एक आम व्यक्ति की जो हाइट होती है वो 4.5 फुट से ऊपर, 5 फुट के आसपास हम मानते हैं कि 5 फुट तक तो कम से कम हाइट होनी चाहिए, चाहे लड़की है लड़का है
0: जी।
1: लेकिन जब इनसे नीचे जब हाइट है रह जाती है तो उसको हम बोने की श्रेणी में गिनते हैं, तो बोनापन भी विकलांगता की श्रेणी में डाला गया है। एक बौद्धिक विकलांगता हम जिसको बोलते हैं, मंद बुद्धि है, बच्चों को सोचने समझने की या किसी व्यक्ति को समझ नहीं है, लिखने में पढ़ने में सक्षम नहीं है, तो बौद्धिक विकलांगता भी इसमें डाली गई है। मानसिक बीमारी, जिसमें जैसे कई लोगों को भूलने की बीमारी होती है या फिर किसी और प्रकार का मानसिक चैलेंज है उसके व्यक्ति के साथ, तो वो भी इसको भी उसमें रखा गया है। साथ ही साथ ऑटिज्म जो है विकलांगता की श्रेणी में आता है। मांसपेशियों की जो बीमारी, कई बार क्या होता है हमारी जो मांसपेशियां हैं उनमें भी अकड़न जकड़न के कारण हम हाथ पैर नहीं हिला पाते हैं, नहीं चला पाते हैं, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। फिर एसिड अटैक के बहुत सारे मामले हमारे इंडिया में हुए हैं तो एसिड अटैक के बाद जो मोस्टली जिनके साथ भी एसिड अटैक हुआ है वो जानते हैं उन्होंने उसमें किस तरह की तकलीफ झेली है और उसके बाद भी उनके कार्य करने की क्षमता में बहुत सारा फर्क पड़ता है, तो एसिड अटैक के पीड़ितों को भी इसमें शामिल किया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में, एक्सीडेंट में, बाढ़ में, भूकंप में, किसी भी प्रकार की नेचुरल क्लैमिटी के कारण अगर अपना कोई अंग खो देता है, सुनने समझने की क्षमता खो देता है तो उन लोगों को भी इसमें

0: दिया गया है। और रही बात कानूनों की रुचि का, तो कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वो हम सामान्य व्यक्ति हैं, चाहे विकलांग व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति भी कानून का सहारा ले सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि जो भी हमारे संविधान में हमें अधिकार दिए गए हैं, जैसे सामाजिक एकता सुरक्षा का अधिकार है, इसमें जीने का अधिकार है, सबसे पहले तो यही बात है कि इस तरह के लोगों को हम ताने दे दे के उनके अंदर का जो एक मानसिक मनोबल होता है उसको खाली कर देते हैं, उनको खोखला बना देते हैं। तो वो मरने के लिए कई बार ऐसा होता है कि हम दुनिया में आए क्यों हैं, तो जीते हुए भी वो एक मरे हुए इंसान की तरह जीवन जीते हैं, तो उनको जीने का अधिकार है, उनको एक गरिमापूर्ण एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जीने का अधिकार है। अगर नौकरियों में उनको समान अवसर का अधिकार है, अक्सर हमने देखा है कि हमने इन विकलांग लोगों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कई जगह महिला पुरुषों में जिस तरह के सामान्य में भेदभाव हम करते हैं नौकरियों के अवसर में कि महिला है काम नहीं कर पाएगी
1: जी।
0: हम उनको अच्छे भले व्यक्ति को उसकी योग्यता होने के बावजूद नौकरी का अवसर नहीं देते हैं, तो आप सोचिए हमारे समाज में कितनी कुंठा भरी है, कितने हम पीछे हैं इन मामलों में कि हम एक अपाहिज व्यक्ति को जो है वो नौकरी देने से गुरेज करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उसकी कार्य क्षमता पर फर्क पड़ेगा, जिस तरह का काम नियोक्ता को चाहिए उस तरह का वो नहीं कर पाएंगे। तो ये भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। कानून की नजर में सभी व्यक्ति हैं, संविधान ने सभी को बराबर अधिकार दिए हैं, और जितने भी हमारे अधिकार हैं वो समरूप से उन व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं जो हम सामान्य लोगों पे होते हैं। इन लोगों को शिक्षा का अधिकार है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी कोई भी स्कूल टीचर या कोई भी प्रिंसिपल ऐसे बच्चे के साथ भेदभाव करता है, उनको अलग थलग बिठाते हैं स्कूल में, अपाहिज होने की वजह से या दिव्यांग होने की वजह से अगर उनको एक तरफा रख दिया है, उनको बार बार एहसास करवाया जा रहा है, तो ये अपने आप में क्राइम है। हम ऐसे व्यक्तियों के साथ जो है वो कानूनन सहायता लेके एक्शन ले सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा दोस्तों रूमा जी ने कि जैसे हमारे अधिकार है, चाहे वो शिक्षा के हैं, चाहे वो हमारे रोजगार के हैं, कोई भी अधिकार है, तो उसी तरह से दिव्यांग व्यक्तियों के भी अधिकार हैं, और वो भी पढ़ लिख सकते हैं, वो भी जो है जॉब कर सकते हैं, अपने लिए वो है कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम उन्हें सपोर्ट नहीं करते, हमें ऐसा लगता है कि नहीं अगर वो जॉब करेंगे तो स्पेशल एक इंसान उनके साथ रुक जाएगा, उन्हें मतलब टाइम टू टाइम उन्हें देखना पड़ेगा, केयरिंग की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों इतना वही बात आ गई ना कि जहां इंसानियत होती है और हमें मन में एक लगन होती है ना कि किसी का साथ देना है, तो वहां पर हम ये सब बातें नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनकी भी कोई मजबूरी है कि वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं या कुछ काम अपनी एंड से नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा कोई चाहता तो नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें एक तरह से जन्म से हमारे साथ आ गई हैं, तो उसमें हम सपोर्ट कर सकते हैं, उनका सहारा बन सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। तो रूमा जी, अभी आपने बात की शिक्षा और रोजगार की, तो हम बात करें कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा और रोजगार में ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो कि उन्हें मिलनी चाहिए।
0: बिल्कुल रुचिका, जिस तरह से एक सामान्य व्यक्ति को शिक्षा और रोजगार में अवसर मिलने चाहिए, उसी तरह इनके लिए भी प्रावधान है। और शिक्षा जो है, जो सरकार जो है वो इन लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का जो है प्रावधान रखा है उन्होंने। अगर कोई व्यक्ति सीखने समझने में अक्षम है, वो पढ़ने लिखने में अक्षम है, तो इस तरह से उनके कौशल विकास की ओर जो है वो सरकार फोर्स करती है कि इन लोगों में कम से कम उनकी योग्यता को जान परख कर इस तरह का कौशल विकास किया जाए कि कल को वो दूसरों पर निर्भर होने की बजाय जो है वो स्वयं ही अपना कोई रोजगार तलाश कर सके, ताकि किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। और देखो, आपने कई बार सोशल मीडिया पे भी सुना होगा, ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों में बहुत सारी खूबियां होती हैं।
1: बिल्कुल,
0: अभी हम बात करें तो हमारे म्यूजिक की बात करूं तो संगीत जगत में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है अरविंद जैन जी का। तो आप देखें कि वो फिजिकली चैलेंज थे, बचपन से उनको आंखों की प्रॉब्लम थी, वो देख नहीं सकते थे, और देखिए उनके माता पिता ने उनकी योग्यता को पहचाना, उन्होंने संगीत सीखा और संगीत जगत में अपना नाम बनाया है। और रविंद्र जैन किसी पहचान के मोहताज नहीं है, वो खुद भी लिखते भी हैं, गाते भी हैं और संगीत भी कर देते हैं अपने गीतों को, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे गीत हम उनके सुनते हैं, और सच बोलूं तो मेरा मन हो गया कि एक रविंद्र जैन जी का ही गीत इस कार्यक्रम में सुन लिया जाए, तो बहुत अच्छा लगेगा। और आप देखिए कि एक ट्रिब्यूट होगा हमारा दिव्यांग जनों के लिए कि कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम तभी तक रहता है जब तक वो मन से अपने आप को अक्षम मानता है, लेकिन जब हम मन से अपने आप को सक्षम मानते हैं तो हम हर जगह सक्षम है, और रविंद्र जैन जी उसका बहुत ही बड़ा उदाहरण है। सुनते हैं एक प्यारा सा, उन्हीं की आवाज में गाया हो उनका प्यारा सा।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो मिलते हैं आप सभी से इस छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस समय एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: रूमा के साथ।
0: जी तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बहुत ही खास आज के कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में, कैसे वो अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, कैसे वो अपने लिए आवाज उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं और भी कुछ खास बातें। तो रूमा जी, अभी हम बात कर रहे थे कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कानूनी अधिकार जो है वो कौन कौन से हैं। शिक्षा के अधिकार की हम बात कर रहे थे, रोजगार के अधिकार की हम बात कर रहे थे और खास करके बात कर रहे थे कि शिक्षा और रोजगार में ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो उनके लिए दी जानी चाहिए।
1: बिल्कुल, इस जो अधिनियम है दिव्यांग जनों के लिए, इस अधिनियम में शिक्षा और कौशल विकास के जो प्रावधान रखे हैं उनका मेन जो पर्पस है वो यही है कि इस तरह के व्यक्ति अपनी आंतरिक जो भी उनकी योग्यता है उसके साथ वो आगे बढ़े। और इसको प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सरकार ने बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान है, 5% सीट्स जो हैं वो किसी भी कोर्स में, जैसे वो प्रोफेशनल कोर्स है, वोकेशनल ट्रेनिंग है या स्कूल्स हैं, वहाँ पे दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित है। इसी तरह सरकारी नौकरियों में इनके लिए 4% का जो कोटा है वो सुनिश्चित किया गया है। और अगर बात करें भूमि की, तो आपने देखा होगा कि हमारे समाज की टेंडेंसी ऐसी है कि जमीन के लिए भाई भाई एक दूसरे से लड़ जाते हैं, और जब बात आती है किसी दिव्यांग परिवार के किसी सदस्य की, तो जो सही शारीरिक रूप से जो सक्षम व्यक्ति है वो सोचता है ये दिव्यांग ही है, तो इसको भूमि में हिस्सा देके क्या ही करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सरकार के ने प्रावधान किया है कि जो दिव्यांग व्यक्ति है उसका भी प्रॉपर्टी में पूरा आरक्षण है। और ऐसे व्यक्ति जिनके पास भूमि नहीं है उनके लिए भी, दिव्यांग जनों के लिए सरकार की ओर से भूमि आवंटन का भी प्रावधान किया गया है। उन व्यक्तियों को उनके गुजारे लायक 4 या 5 मरले तक की जो भूमि है वो उनको सरकार द्वारा आवंटित की जाती है। तो बहुत सारी स्कीमें हैं सरकार की जो इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो लाई जा रही है, ताकि किसी भी शारीरिक अक्षमता के चलते हीन भाव से ग्रस्त होकर वो समाज से कटके ना रहे, क्योंकि हमारा मेन मकसद तो सबको समाज में एक साथ लेके आगे बढ़ना है और इस मकसद को काफी हद तक पूरा भी कर रहे हैं। आप देखिए हमारे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए पेंशन का प्रावधान है। इसके लिए एक और चीज मैं ऐड करूंगी कि बहुत सारी कुछ फॉर्मेलिटीज जो है वो हमें करनी पड़ती है। हमने पहले भी एक कार्यक्रम किया था जिसमें हमने डॉक्यूमेंटेशन की बात करी थी, तो डॉक्यूमेंटेशन हरेक सरकारी सुविधा का लाभ लेने के लिए बहुत जरूरी है। और अगर कोई व्यक्ति हमारे आसपास आसपास है वो दिव्यांग है और उसको सरकारी सहायता की जरूरत है, तो सबसे पहले तो उसको मेडिकल करवाना पड़ता है। और हमारे धर्मशाला की मैं बात करूं तो हर शुक्रवार को मेडिकल बोर्ड बैठता है यहाँ पे, जहाँ पे दिव्यांग व्यक्तियों का एक जो डॉक्टर्स का पैनल होता है वो बैठता है, उनका चेकअप करते हैं और वहाँ पे उनकी जो कितनी प्रतिशत उनकी दिव्यांगता है का आकलन किया जाता है, उसके पास सर्टिफिकेट दिया जाता है। और जिस व्यक्ति की दिव्यांगता 40% से ऊपर पाई जाती है उसको सारी सरकारी योजनाएं जितनी भी उसके लिए जिसके लिए वो एलिजिबल है उनका लाभ उनको मिलता है। अगर कोई व्यक्ति चल फिर नहीं सकता है तो उनको रेड क्रॉस से जो है वो व्हील चेयर प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके साथ साथ बसों में ट्रेवल करने के लिए, जो ट्रेवलिंग के लिए सक्षम है उनको बस पास जो है दिए गए हैं सरकारी बसों में, मुफ्त यात्रा की सुविधा है। हवाई जहाज में उनको स्पेशल आरक्षण मिलता है ट्रैवलिंग के लिए, ट्रेन में अगर उनको जाना है तो उसमें भी स्पेशल आरक्षण दिया जाता है। इसके साथ साथ जो भी दिव्यांग व्यक्ति है जिसकी दिव्यांगता 40% से अधिक है, हर एक व्यक्ति को सरकार की ओर से पेंशन मिलती है, जिसके लिए जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आवेदन देना होता है। और क्राइटेरिया वही रहता है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ हमें व्यक्ति का आधार कार्ड, उसके साथ साथ उसका राशन कार्ड जो कि वो स्थायी निवासी होने का हमें एक प्रमाण पत्र है वो लगाना पड़ता है, साथ ही दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगाना होता है, बैंक अकाउंट की कॉपी वहां पे जमा करवा के उनको पेंशन जो है मासिक पेंशन जो है वो मिल रही है। दूसरा, एक सरकार ने सहारा योजना करके योजना चला रखी है, जो व्यक्ति रेगुलर तरीके से दवाइयां खा रहे हैं इस तरह के व्यक्ति, क्योंकि कई लोगों को जो है वो जो ऑटिज्म के शिकार हैं, पार्किंसंस के रोगी हैं या और भी कई प्रकार की जटिलताएं हैं जिनको शारीरिक रूप से, तो उनके लिए जो है वो दवाइयों का खर्चा रहता है, तो सहारा योजना के तहत उनको दवाइयों का खर्चा जो है वो सरकार प्रोवाइड करती है। तो बहुत अच्छी सरकार की योजनाएं हैं जो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए और इसके लिए हम लोगों को इनका सहयोगी बनने की भी जरूरत है।
0: बिल्कुल सही कहा रूमा जी ने, तो हम तो सहयोगी बन रहे हैं लेकिन आप उनके कितने सहयोगी बन रहे हैं ये आप इस जानकारी के बाद पता चलेगा। क्योंकि अक्सर दोस्तों कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं, हमारे में कोई कमी, अगर मानो कि हम बीमार हो जाए, हम बेड पे मतलब लेट जाए, हमें उठने का मन उठा ना जाए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, तब भी हमें कितना बोझ लगने लग जाता है कि हम तो किसी पे डिपेंड हो चुके हैं। तो सोचिए जिन्हें इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है तो उनके मन में क्या आता होगा, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते हैं, अपने मन को जुटाते हैं कि नहीं हम जिंदगी में आए हैं तो कुछ करके जाएंगे और कुछ बड़ा करके जाएंगे, अपने टैलेंट को अपनी स्किल्स को वो एनहांस करते हैं। बल्कि कहते हैं ना दोस्तों इनके जो माइंड है ना बहुत शार्प होते हैं और बड़ी जल्दी ये चीजों को कैच कर लेते हैं जितना शायद हम लोग भी नहीं कर पाते हैं, तो एक तरह से हम इन्हें ब्रिलियंट कह सकते हैं।
1: बिल्कुल ब्रिलियंट होते हैं और देखो भगवान ने इनको दिव्यांग बनाया है तो दिव्य गुण भी इनमें डाले हैं और इन गुणों को पहचानना हम सबके जिम्मेदारी है। हम पहचाने कि वो व्यक्ति के आंतरिक प्रतिभा को हम कैसे निखारें। और आप देखिए आप बोलेंगे समय हो गया और मैं बातों को बढ़ाए जा रही हूँ, तो हमारे यहाँ पे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सूर्या चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो काम करता है। वहाँ पे इस तरह के दिव्यांग बच्चे आते हैं जिनको बैठने में लिखने में कई तरह की प्रॉब्लम आती है। और आप देखें कि अभी हमारा रेड क्रॉस ने एक मेला लगाया था जो हर साल लगता है हमारी धर्मशाला में, तो उस मेले में उन बच्चों की बनाई हुई बहुत सारी आइटम्स मैंने देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी ने कैंडल्स बनाई है, किसी ने ड्राइंग पेंटिंग बनाई है और बहुत सारी छोटी छोटी जो चीजें हैं उन्होंने बनाई है। और देखिए उन्होंने भी उनकी प्रतिभा को पहचाना है और उनको मौका दे रहे हैं। और ये छोटी छोटी चीजें जैसे कैंडल बनाना और ड्राइंग पेंटिंग इस तरह की छोटी छोटी चीजों को बना के भी ये लोग अपने रोजगार को की ओर प्रशस्त हो सकते हैं। क्योंकि अगर किसी के व्यक्ति में प्रतिभा है तो उस प्रतिभा को अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो शायद वही उसके रोजगार का
0: साधन बन जाए।
1: और आपने देखा मैंने उस रोजगार मेले सॉरी उस रेड क्रॉस के उस मेले में मैंने उन बच्चों का सामान खरीदा, बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने ग्रीटिंग कार्ड बनाए थे, एनवेल्प बनाए हैं, गिफ्ट के गिफ्ट रैप बनाए हैं उन्होंने, गिफ्ट पाउच वगैरह, तो इतना अच्छा लगा मुझे देख के। तो मुझे लगा कि नहीं कुछ तो काबिलियत है इन बच्चों में और इन लोगों में, हम इनको सिर्फ जरूरत सिर्फ सपोर्ट की है और अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि इन लोगों का जीवन जो है वो बहुत सरल हो जाएगा। और दूसरा एक चीज, कभी भी इन लोगों को जो हम ताना कसते हैं शारीरिक अक्षमता को लेके जो बातचीत करते हैं उल्टे सीधे नाम रख देते हैं वो हमें नहीं रखना चाहिए। क्योंकि देखिए जब हम सामान्य व्यक्ति होके इस तरह की बातों से आहत हो सकते हैं तो देखिए वो तो अपनी उस अक्षमता के चलते किसी से अपने मन की भड़ास भी नहीं निकाल पाते और जब अंदर ही अंदर जब वो घुटते हैं इन चीजों को सुन के तो उनके अंदर गुस्सा और तनाव जो है वो बढ़ता है और वो उनके लिए भी सही नहीं है और हमारे लिए भी सही नहीं है। तो हमें थोड़ा सा सहयोगी तो इनका बनना ही पड़ेगा।
0: बिल्कुल दोस्तों, और ये जो रोजगार की रूमा जी बात कर रहे हैं तो सच में जब हम अपनी मेहनत से चाहे एक ही रुपया कमाते हैं ना तो रात को चैन की नींद सोते हैं कि नहीं कुछ किया है, कुछ बेहतर किया है हमने, हम किसी पे डिपेंड नहीं है। तो बस उन्हें जरूरत है थोड़े से सहारे की, सहारा नहीं तो गाइडेंस की, एक बोलते हैं ना गाइडेंस भी मिल जाए। मैम ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई रेड क्रॉस सोसाइटी की या जो भी है, तो ये मैम ने धर्मशाला की बात की, लेकिन आपको इस चीज की जानकारी होगी तो आप अपने आसपास जो है ये चीज एक्सप्लोर कर सकते हैं कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ऐसे कौन कौन से आपके आसपास सुविधाएं दी जा रही हैं। क्योंकि जब आपको पता नहीं होगा तो आप इसके बारे में नहीं जानेंगे, लेकिन जब तक आपको जानकारी होगी तो आप पूछ सकते हैं, इन अधिकारों के लिए आवाज उठा सकते हैं कि ऐसा क्या किया जा रहा है जो हमारे लिए बेहतर है या हमारी जिंदगी के लिए बेहतर है। तो रूमा जी मुझे लगता है कि बहुत ही खास जानकारी हमने अपने दोस्तों तक पहुंचाई है और अब समय फिलहाल अलविदा लेने के लिए उस मुकाम पर हम पहुंच
1: लेने का समय हो गया है, लेकिन ना तो रचिका का मन है जाने का और ना मेरा, लेकिन क्या करें ये जो समय है ये हमें इजाजत ज्यादा देर तक रुकने की देता नहीं है। कहते हैं जीवन चलने का नाम, तो हमें भी चलना होगा, चलते हैं।
0: लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें कि इस मतलब कि बातचीत से जुड़ी कोई भी कंफ्यूजन अगर अभी भी आपके मन में है, कोई भी अगर आपको लग रहा है कि योजनाओं के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर रहेगा
1: 9418431223।
0: जी दोस्तों,
1: कोई भी जानकारी हो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। दिव्यांग जनों के अधिकारों के लिए किसी भी प्रकार की कोई चैलेंज आपके सामने आ रही है तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं।
0: जी दोस्तों, तो इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए अपनी होस्ट एंड होस्ट रुचिका और
1: रूमा को
0: अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए और इंजॉय करते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पन की।

बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आए ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत में स्टार्टअप का काफी विस्तार हुआ है।
1: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप में कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत का आर्थिक विकास एक मजबूत नींव पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
2: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। ये एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डाइवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेन देन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
0: आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति पर गृहमंत्री ने इस दिशा में सामूहिक संकल्प का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी आतंकी नेटवर्क को पनाह, भर्ती, प्रशिक्षण, धन या पड़ोसी देशों के विरुद्ध गतिविधियां चलाने के लिए क्षेत्र में कोई जगह न मिले। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगे। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया है। ये लोग राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। पूर्वी दिल्ली में 3 नए प्रदर्शन स्थल रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान सूचित किए गए हैं। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगी। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत भी आज अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 554 अंक बढ़कर 72,479 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 176 अंक की वृद्धि के साथ 22,540 पर पहुंचा। नवरात्रि का आज 3रा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये दिन साहस, शांति और दिव्य शक्ति की प्रतीक देवी चंद्रघंटा को समर्पित है। उन्होंने सभी के लिए सुख, समृद्धि और सफलता की कामना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। जय माता।

0: पंडित मुहूर्त कब का निकला?
1: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
0: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
2: आप चिंता ना करें।
0: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये तो खोटा सिक्का है।
2: और ये का है, पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
3: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
4: तुम क्या खड़ा हो?
3: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाए पक्का?
3: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
6: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
7: दहेज मुक्त बिहार, संकल्प हमारा।
8: शालू
9: बात माने ना तो करवा ले।
8: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
9: अरे वाह, नौकरी लग गई
8: जी।
9: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
8: अरे काका भी है।
9: अच्छा,
8: काका लड्डू खाओ।
10: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
8: बैंक में काका।
11: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
12: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
11: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
8: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
13: बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
12: क्यों भाई?
13: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
12: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
14: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो
8: जी।
15: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
16: वही असली तरक्की।
15: एक कदम स्वच्छता की ओर।
17: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं, बस दूर जाना चाहता है। और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते, उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं, वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
2: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
5: क्यों, क्या हुआ?
2: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
5: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ।
6: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
7: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
6: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया?
7: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

श्रोते हो रेडियो गुंजन तो तुसी इस वेले सुन रहे हो पंजाबी गीत ते आज मैं हां तुहाडे नाल तुहाडी अपनी दोस्त ते आओ सुनदे हां एक होर पंजाबी गीत।

इस वेले तुसी सुन रहे हो पंजाबी गीत रेडियो गुंजन धर्मशाला ते पेश कर दिया एक होर पंजाबी गीत। तुसी इदा ही बने रहे हो साडे नाल यानी रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल।

श्रोते इस वेले तुसी इंजॉय मान रहे हो पंजाबी गीतां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला तो जिथे असीं तुहानूं सुनवा रहे हां वख-वख गायकां दी बोली विच गाए वख-वख पंजाबी गीत।

नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। जय माता दी।

0: पंडित मुहूर्त कब का निकला?
1: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
0: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
2: आप चिंता ना करें।
0: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
2: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
3: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
4: तुम क्या खड़ा हो?
3: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाए पक्का?
3: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
6: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
7: दहेज मुक्त बिहार, संकल्प हमारा।
8: शालू
9: माने ना तो करवा ले।
8: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
9: अरे वाह, नौकरी लग गई
8: जी,
9: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
8: अरे काका भी है।
9: अच्छा,
8: काका लड्डू खाओ।
10: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
8: बैंक में काका।
11: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
12: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
11: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
8: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
13: बैंक में नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
12: क्यों भाई?
13: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
12: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
14: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
8: जी।
15: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
16: वही असली तरक्की।
15: एक कदम स्वच्छता की ओर।
17: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं बस दूर जाना चाहता है, और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा, देश जीतेगा।
1: टीवी हारेगा, देश जीतेगा।
2: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
3: मामा, न्यू शेयरिंग।
2: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
3: कौन था?
2: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
3: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
2: स्मार्ट गर्ल।
3: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
2: याद है ना, नो शेयरिंग।
3: मामा,
4: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
5: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
3: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
6: क्यों, क्या हुआ?
3: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
6: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ।
7: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
8: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
7: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया?
8: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

नमस्ते नमस्कार कानवी दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये दोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला करे मैं शशि हाजिर होइयो कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक तशो तो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तोहा सारे दा ही स्वागत है। इसी स्वागत करने तोहा सारे जुड़ी होने न करने तोहा सारे जो ही इंतजार जड़े से रहा है कि कालू दिया 2 बजते न कने कालू दिया तुह सारे इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़ते न इंतजार दी जड़ा घड़ी है से तुह वास्ते बिल्कुल ख़त्म है कने इसी कने आज कने दिने दी गल करिए ता आज जड़ा दिन है से बेहतर खास है कने तुह जरूर आज कने दिने जो इंजॉय भी करा दे उन्हें न कने आज जड़ा तीसरा नवरात्रा जड़े से तुहां बड़े ही धूमधाम ने मना दे उन्हें न कने इसी कने पूजा पाठ च लीन होने न क्योंकि जैलू भी अहाँ कोई भी काम कर दे न अगर अहाँ पूरी श्रद्धा भाव ने तिस कमे जो कर दे न तो अहाँ जो खुद जो भी अच्छा लगता है कने बाकी जड़ा फैमिली है फैमिली जो भी अच्छा लगता है। तो इसी कने अगर मौसम दी और नज़र दौड़ाइए तो मौसम दी गल करिए 13 अक्टूबर 2026 दी धर्मशाला दा जिहड़ा मौसम है से धूप जिहड़ा है से बड़ी प्यारी हाँ इस टाइम बोली सकदे कि खिली हुआ है कने तो हाँ धूप दा भी आनंद लै दे होने न कने अपने जिहड़ा काम कार है न तिना जो भी करा दे होने न काम कार जिहड़ा कि दाना दे काम कार चले न तिना च भी तो हाँ बिजी होने न क्योंकि जैलू काम होंगे न तो कुथी ना कुथी अहाँ थोड़ा जहा अपनी सेहत का ख्याल रखना भी भुली आते हैं कने पूरा ही काम च जड़े से लीन हो जाते हैं। तशो तो काम कार भी करना जरूरी है पर अपनी सेहत का ख्याल रखना भी अहाँ वास्ते जरूरी है। तो इसी कने अहाँ अपने कार्यक्रम का जड़ा आगाज है से करी लेंगे न क्योंकि आगाज एक प्यारे दे गीत कने होइया तो कार्यक्रम का जड़ा सफर है से और भी प्यारा लगता है। तो इस सफ़र जो जरूर अहाँ प्यारा बनाते न इस गीत कने थोड़ा जहा इंतज़ार करा क्योंकि इंतज़ार तो हमेशा जड़ा बोली सकते हाँ कि इंतज़ार की जड़ा घड़ी है से हर कुसी वास्ते लंबी होंगी तो जरूर इसी कने अहाँ कार्यक्रम दे सफ़र जो अगे बढ़ा देन कने तुहां तक पहुँचा देन ये प्यारी दे शुरुआत प्यारे दिया गीत

0: जुआड़
1: जी, चलो
0: गई।
1: दीदी वास्ते तो कुछ नहीं कर सकते ना जी,
0: हाँ
1: तिने
0: जी,
1: तो रोकी भी नहीं सकते जी।
0: नहीं रोक के सकते,
1: जी
0: जंगली
1: जी
0: जानवर हैं, कौन रोक के सकता।
1: जी जी
0: हाँ जी
1: जी तो माया जी, आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके।
0: जो गीत सुनाइए, राधा रुक्मणी छोड़ के गुजरी है मन लाया, कौन
1: जी
0: आए।
1: जी कुंदिया,
0: और राधा रुक्मणी छोड़ के गुजरी है मन लाया, कौन आए।
1: जी जरूर जी, तोहंदी जेड़ा फरमाइश है भजन है से तोहं तक
0: धन्यवाद,
1: पहुंचान दे, चुनने वास्ते धन्यवाद जी तोहंदा
0: बड़ा धन्यवाद जी।
1: जी। अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्ने भी कर दे न गल बात। हेलो हेलो,
0: हेलो,
1: नमस्ते जी,
0: नमस्ते नमस्ते।
1: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न
0: धन्यवाद जी।
1: जी, तो तुह कुथु दे रहने वाले न, कने तुहंदा ना के है जी।
0: हाँ बड़ी दूर से रहने वाले,
1: जी बड़ी
0: हाँ
1: दूर
0: दाली ने रहने वाले के ना, मेघनाथ ना।
1: जी, तो मेघना जी दाढ़ी कितनी की रौनक लगियाँ
0: रामलीला शुरू हो गई है ना, हूँ
1: जी।
0: संजय का टाइम है, हूँ नहीं
1: जी
0: ना बढ़ रहा था काम।
1: जी जी राम लीला शुरू हुई हो ता हर दिन रौनक आला जेड़ा माहौल ऐसे दिखने जो मिला तो होना ना जी, तो हम भी जानते राम लीला जो।
0: आजकल मतलब तुम्हें पता ही है, टीवी लगाए लेंगे लोग, दिखले ना संजय ने घट बढ़
1: जी, अच्छा,
0: टीवी जी दिखा रही।
1: जी टीवी जी जी
0: वाह,
1: जी हर चीज होना हाँ
0: ये गाने
1: दे
0: और है ना, नहीं है लोग।
1: जी, अच्छा ओ दे दिखना
0: हाँ देखना, हमने ठंड भी है ना थोड़ी।
1: जी जी ठंड तो हो ही है ना जी।
0: हाँ ठंड
1: जी ता मौसम दे अनुसार भी चलना जरूरी है, कने धाना दे जेड़ा काम मन से पे ये तो हाँ जो कि
0: हाँ
1: अली
0: जी,
1: नहीं
0: बड़ी बैठे आना था।
1: जी, अच्छा बड़ी बैठे तो हाँ
0: हाँ क्या बात बोला रे, वीरवार बड़ी बरखा आ गया क्या बात।
1: जी, बरखा तो दसियो जी,
0: हाँ
1: पर मौसम का कोई
0: निकले
1: भरोसा नहीं होता ना जी जी
0: निकले क्या होता।
1: जी जी तो मौसम दे पहले ही जेड़ा अपना काम है, अगर तुम्हें तो लगता है कि हो जाना है फ्री तो जरूर
0: ओ सती जी इससे आगे नहीं जा सकते।
1: जी, जाई तो नहीं सकते, पर जितना कि मतलब जेड़ा काम निकल गया सही अपना है ना जी
0: कोशिश करना, काम ऐसा रहा कि
1: जी
0: बाकी गला
1: बाकी
0: भगवान पे के था बड़ा मुश्किल
1: जी, सही ना जी, मौसम का भरोसा नहीं है, मौसम के अनुसार यहाँ चल ही नहीं सकते ना जी, कि यहाँ ये सोचने कि
0: है।
1: यहाँ
0: हाँ
1: जल्दी
0: कोशिश
1: जल्द
0: करेंगे।
1: जी। ता मेघना जी, आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना है जी, कुंदी फरमाइश है तो हंदी।
0: अरे एक नवा भज निकलिया अमन कौर का,
1: जी जी जी
0: क्या सुना था।
1: जी जरूर जी, तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचान दें जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी। तो श्रोताओं तुह सारे इस वक्त कार्यक्रम एंजॉय करा देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। अगले जेड़ा श्रोता ने तिना कन्ने भी कर देना गल बात। हेलो हेलो
0: नमस्कार,
1: हेलो
0: नमस्कार
1: जी, तो हम अपनी रेडियो सेट दी आवाज़ कम कर लेंगे जी।
0: जी।
1: जी नमस्ते जी, स्वागत है जी तोहंदा जी, करी ले आवाज़ कम तो हाँ जी, स्वागत है जी तोहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला से। ठीक ठाक है ना
0: राम
1: जी, क्या काम काज छेड़े जी तो हाँ, क्या करा दे
0: करा दे काम करता नहीं हूँ, राम लगे
1: जी, अच्छा राम करा दे
0: कर
1: जी, ता अपना परिचय भी जरूर दे दिया जी, कुछ देर रहने आ रहे
0: दे।
1: ना
0: हरसिंह बोला भी दारू के।
1: जी, अच्छा हरी सिंह जी दारनू ते बोला दे।

0: जी जी ता हरि सिंह जी आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनने जी कुंदे फरमाइश है तो हंदी
1: मैं ये
0: जी कुंदिया
1: टिल्ले टिल्ले
0: जी टिल्ले वाली माता
1: आली आली।
0: जी जरूर जी कोशिश कर दे ना तो हंदी जेड़ा फरमाइश है तो हाँ तक पहुंचाने दी ना जी जी धन्यवाद जी तो हंदा जुन्ने वास्ते तशो तो वहाँ भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ान दे ना कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तो हाँ तक पहुंचान दे ना।

कानवी दशमलव दो मेगाहर्ट्ज़ पर यह तो हाँ सारे का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम इंजॉय करा देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने इसी कन्ने तो हाँ सारे जो पता है कि इस कार्यक्रम का जेड़ा सफर है से तो हाँ तक रहा है दो ते तीन बजे तक कन्ने तो हाँ सारे ये भजन सुनिया कन्ने इस भजन की फरमाइश यहाँ तक आई हुए धर्मशाला ते कने जरूर तिना तक कहाँ ये भजन पहुँचाया कने तो हाँ सारे भी इंजॉय किया तो शो तो गलबात जड़े से हमेशा चली रहती है कने तो हाँ सारे भी गलबात कने जुड़ते न ता जड़ा अगली फरमाइश है से भी तो हाँ तक पहुँचाते न क्योंकि इंतजार जड़े से तो हाँ करते रहते हैं कि कलू दी है तो जड़ा फरमाइश है न से हाँ तो हाँ तक पहुँचाते न तो जरूर कोशिश आती यही रहती है कि तो जड़ा फरमाइश है न सभी यहाँ तुह तक पहुँचान कने इसी कन्ने जड़ा गलबात है सभी जरूर तुह तक पहुँचान।

ये तो हाँ सारे का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तश्रोताओं तो हाँ सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया भजन प्यारी दे फरमाइश। ये भजन ओरिजिनल जिड़ा वॉइस जिड़ा ये सैनी था पर जिड़ा गीत गया था से जरूर अहाँ तो हाँ तक पहुँचाया है क्योंकि कोशिश जिड़ा से यहाँ दी रहती है कने जरूर इस भजन दे जिड़ा बोल हैं से बड़े ही प्यारे न इस भजन दे जिड़ा बोल हैं से बोला दिन कि चुन चुन करी जिड़ा से मैल बनाया ना से मेरे ना से तेरा है क्योंकि आजकने दौर दी अहाँ गल करिए अहाँ हमेशा ये सोची करी चलते न कि पैसा ही अहाँ वास्ते सब कुछ है पर अहाँ कुथी न कुथी अपने जेड़े रिश्ते न तिना जो नज़रअंदाज करना जेड़े से शुरू करी देन। ठीक है पैसा भी यहाँ वास्ते ज़रूरी है पर रिश्ते जेड़ा रिश्ते न परिवार दी गल करिए या भाई बहन दा रिश्ता है या माता पिता दा बच्चियां कन्ने हर रिश्ता जिहड़ा है सियाहां दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करता है पर सियाहां पर निर्भर करता है कि अहां पैसे जो ज़्यादा अहमियत दिंदे न कि अपने रिश्तियां जो ज़्यादा अहमियत दिंदे न क्योंकि पैसा तो अहां दोबारा कमाई सकते पर रिश्ते अगर एक बारी टूटी आंदे न या बिखरी आंदे न तो तिना जो अहां दोबारा जिहड़ा है से नहीं कमाई सकते। अहाँ का जिहड़ा स्वभाव है अहाँ का जिहड़ा व्यवहार है सियाहां पर निर्भर करता है कि अहाँ किस तरीके ने रखते न क्योंकि परिवार च रहने वास्ते अपना जिहड़ा व्यवहार है या बड़े का मान सम्मान करना कितना ज़्यादा जरूरी है या माता पिता का जिहड़ा अहाँ के जीवन च रोल है सभी जरूरी है। कई बार अहाँ यही सोचते न कि अहाँ हमेशा अपना ही फायदा दिखते न हर कोई अपना फायदा नहीं दिखता हर किसी की अपनी अपनी सोच होती क्योंकि सोच पर ही जड़ा है से निर्भर करता कि अहाँ किस तरीके ने सोच विचार जड़ा न से रखते न। कल भी अहाँ गलबात की थी सकारात्मक सोच पर कने ज़रूर सोच जड़ा है से हर जगह आई आती है अहाँ अपना व्यवहार किस तरीके ने रखा देना अपना जेड़ा बोल चाल है से किस तरीके ने रखा देना से यहाँ पर निर्भर करते हैं। तो शो तो इसी करने हाँ फिर ते थोड़ा दिया कार्यक्रम दे सफ़र जो आगे बढ़ाना है क्योंकि तो हम भी इंतज़ार जेड़ा न से ज़रूर करा देना कि कालू दिया अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँच दी है अगली फरमाइश भी तुह तक पहुँचानी है कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफ़र करने यहाँ करने जुड़ सकते कने यहाँ करने गलबात चिड़े से ज़रूर करी सकते।

तुहा सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला श्रोताओं तुहा सारे इस वक्त कार्यक्रम इंजॉय करा देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने कने तुहा सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़ देने कने इंतजार जी रहे से तुह जो लगे रहेंदे कि कालू दिया तुह दिया जेड़ा फरमाइशन सियाह तुह तक पहुँचा देने तो जरूर अहां जो भी इंतजार जड़े से यही रहा कि तुहनिया जेड़ा फरमाइश आन से अहां तुह तक जरूर पहुँचान। तो इसी कने अहां फिर ते थोड़ा देर अगे बढ़ते न कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते हैं।

तशतों ये फरमाइश हाँ पहुँचाई मेघनाथ जी तक सरैने वाले ने दाड़ी ते कने इसी कने एक जड़ा जानकारी है से तुह तक पहुँचाई दे न, क्योंकि जानकारियाँ पहुँचाना भी तुह तक जरूरी है न। ता कल्ले दी अहां गल करिए 14 अक्टूबर दी, ता सुबह 12 बजे ते ले करी जड़ा है से 2 बजे तक 11 KV धर्मशाला जड़ा फील्डर है इसके जितने भी अंतर्गत जड़ा आने वाले क्षेत्र हैं चटोरी गली या नियर पेट्रोल पंप कने इसी कने जड़ा होटल है या नियर शीला चौंक है HDFC बैंक है आदि जितने भी जड़ा आस पास क्षेत्र होंगे न तिथु जड़े से विद्युत जड़े से आपूर्ति बाधित रहनी है, यानी कि फ्री ते टाइम जड़े से तुह सुनी लिया कने जड़ा दिनांक ऐसे भी सुनी लिया दिनांक है 14 अक्टूबर 2026 कने समय जड़े से 12 ते लेकर 2 बजे तक। तो ज़रूर अपने जड़ा काम मन से समय के अनुसार करी लैन कने जड़ा सहयोग है से जरूर देन, क्योंकि समय के अनुसार अगर अहाँ चल देन कने अपने जड़ा काम मन से कर देन तो कुथी ना कुथी अहाँ सारे काम जड़ा न से समय के अनुसार करी पाते न। तो इसी कने अहाँ भी समय के अनुसार कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाना है, क्योंकि समय जड़ा है से अपनी रफ्तार लेकर चलिया है तो अहाँ भी समय की रफ्तार कने चलना है कने अगली जड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचानी है।

तो श्रोताओ भजन अह पहुँचया हरि सिंह जी तक कने सरेने वाले नदारनू ते तो जरूर तुह सारे भी इंजॉय किया होना है कने इसी कने अह फ्री ते वापिस तुह तक पुजी होने कने फ्री ते थोड़ा दिया क्या वर्दे न क्योंकि समय जड़ा है यहाँ थोड़ा दिया है तो समय के अनुसार चलना बेहद ज़्यादा जरूरी है। तो फरमाइश अह तक पहुंची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना का नाव है शमशेर सिंह जी कने सरैने वाले ने दरगाटा ते

पर ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला दर्शो तो इसी करने तो हाँ सारे अपनी रेडियो दोष शिशुदिया अनुमति करने जिड़ा भी श्रोता इस कार्यक्रम जो सुनाते थे तिना दा भी तहे दिल ते धन्यवाद है करने इन्हें रेडियो गुंजन धर्मशाला करने जुड़े रहे क्योंकि यही प्यार रेडियो गुंजन धर्मशाला करने तो हमें हमेशा रहना चाहिए था करने जिन्हें श्रोता की फरमाइश तिना तक नहीं पुजी हुआ है तिना ते मैं माफ़ी चाहती है जरूर अगली बार जरा कोशिश है सहंती रहनी है कि तुम्हारी जरा फरमाइश है सह तुम तक पहुँचा है इसी करने तुम सारी अपनी रेडियो दोष शिशु जुदी

नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। जय माता दी।

0: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
1: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
0: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम।
2: आप चिंता ना करें।
0: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का है? ये तो खोटा सिक्का है।
2: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
3: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
4: तुम क्या खड़ा हो?
3: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाए पक्का?
3: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
6: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
7: दहेज मुक्त बिहार, संकल्प हमारा।
8: शालू
9: माने ना तो करवा ले।
8: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
9: अरे वाह, नौकरी लग गई
8: जी,
9: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
8: अरे काका भी है।
9: अच्छा,
8: काका लड्डू खाओ।
10: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
8: बैंक में काका।
11: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
12: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
11: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
8: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
13: बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
12: क्यों भाई?
13: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
12: कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
14: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
8: जी।
15: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
16: वही असली तरक्की।
15: एक कदम स्वच्छता की ओर।
17: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं, बस दूर जाना चाहता है। और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि कुछ लोग वापस नहीं

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए?

0: अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल,
0: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
0: मामा,
2: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
3: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
0: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
4: क्यों, क्या हुआ?
0: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
4: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल मैं बात करता हूँ।
5: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
6: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
5: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया?
6: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

रेडियो गुंजन धर्मशाला और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

0: मेहमान तू।
1: अरे सर आप गए नहीं, आप तो 5 मिनट में जाने वाले थे। ये क्या बना रहे हैं आप?
2: ये मेढक, ये बतख और ये केला।
1: मेढक

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने

नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। जय माता।

0: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
1: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
0: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
2: आप चिंता ना करें।
0: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का है? ये तो खोटा सिक्का है।
2: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
3: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज। काहे नहीं सुनते आप हमारी?
4: तुम क्या खड़ा?
3: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाएं, पक्का?
3: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
6: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
7: दहेज मुक्त बिहार, संकल्प हमारा।
8: शालू
9: काकी, लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
10: अरे वाह, नौकरी लग गई
9: जी।
10: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
9: अरे काका भी है।
10: अच्छा,
9: काका लड्डू खाओ।
11: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
9: बैंक में काका।
12: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
13: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
12: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
9: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
14: बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
13: क्यों भाई?
14: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
13: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहा है? अरे
15: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
9: जी।
16: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
17: वही असली तरक्की।
16: एक कदम स्वच्छता की ओर।
18: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना, वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं, बस दूर जाना चाहता है। और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि कुछ लोग वापस नहीं आते।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते, उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं, वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
5: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
6: क्यों, क्या हुआ?
5: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
6: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ।
7: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
8: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
7: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया?
8: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

0: नमस्कार श्रोतों, FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा रहा हूँ। सचिन कपूर हाजिर बुझेगा कजो कि चूर बुझेगा एक मिनट बुझेगी इन श्रोतों तो हाजिर तो बुना पैना है कजो कि बहुत सारे श्रोता गण जो कि सो इंतजार रहा चूर बजने रहा श्रोतों और आखे इंतजार खत्म भी बुआ है श्रोतों और बलते न कि जी तुसु इंतजार रहा ना श्रोतों ते मुंजो भी करखन अगर ख इंतजार गया आंसू रहा हा चूर बजने रहा ता तो सब श्रोता जरूर कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत की असो हो सकते हैं। नंबर आऊँ तुसो कि शेयर करनो आ साझा करनो आ 7018 8 8 7 0 9 8 पर नंबर आक मौके फिर आऊँ शेयर करनो हा 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत की असो हो सकते हैं। बहरहाल श्रोतों कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं और इंदे श्रोता गण आसू की कनेक्टेड हैं तीनों कनेक्ट कर लेंदे और धर्मशाला रे मौसम रे बारे क्या बली सकते हैं श्रोतों की दो दिन लगातार धूप निकले या श्रोतों था मौसम इस समय की है सो 16 डिग्री सेल्सियस रे आसपास की है सो तापमान दस्तू करता हा श्रोतों। ह्यूमिडिटी री गल कहूँ करूँ तो 72% रे आसपास ह्यूमिडिटी की है सो दस्तू करता हा श्रोतों। तो ये था धर्मशाला रे मौसम फिलहाल तो आरों बाद सोमवार मंगलवार की है सो धुप्पा कड़ी तेन अब हगूँ दौर किया सो भी थोड़ा थोड़ा धुप आया इंदे श्रोता सुगी कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
1: हेलो
0: हेलो नमस्कार जी।
1: नमस्कार नमस्कार सचिन जी।
0: नमस्ते जी नमस्ते। ठीक ठाक ना?
1: ठीक ठाक बच्चे ठीक ठाक बढ़िया ये वाला
0: अच्छा। भी ठीक ठाक ना जी आहे भी बढ़िया खरेन तो है
1: दसा
0: भी बड़ी बड़ी मुबारक बुन नवरात्रे दी जी। हाँ जी हाँ जी बन्नी माता आले अम्मा बल्लू कर दे निंदे
1: बस बन्नी माता रे बाद हम ना बच्चे
0: अच्छा
1: ठीक ठाक ना करा।
0: हाँ जी हाँ जी है ठीक ठाक ना तो बोले तो ठीक ठाक ना जी
1: बस जा थोड़ा थोड़ा
0: अच्छा अच्छा चलिए सो तुस होगी मुलाकात की सो जरूर करने है ना जी।
1: कोई ना बच्चे कोई ना इले इले
0: हूँ तो सो हदला के न के कर करे हाँ जी हाँ जी
1: ठीक है
0: ठीक ठीक है जी ठीक है धन्यवाद
1: बड़ा धन्यवाद
0: धन्यवाद जी। तो श्रोतों जी की तो ये सब जान दें कि आज हा त्रिया नवरात्रा है ना त्रिया आज त्वारो पहला सोमवार दुआ आज मंगलो आज मंगलो त्रिया ता त्रिया नवरात्रा की है श्रोतों। माँ दुर्गा रे त्रिया जो स्वरूप है सो माँ चंद्र घंटा रब हुंदा हा श्रोतों और बिल्कुल यारी पूजा की या पूजा अर्चना की सो करना चाहते हैं श्रोतों। शांति राय प्रतीक मन्ने गंदा हा साहस राय प्रतीक मन्ने गंदा हा वीरता राय प्रतीक किया सो मन्ने गंदा हा श्रोतों है ना जी। और धर्मशाला में मौसम हो गया अपडेट पूछ गया ना है आज त्रिया नवरात्रा ठेरे बारे में थोड़े करे अपडेट किया है करीते श्रोतों अपडेशन किया सो देते दूसो ता बन्नी मातरा भजन किया सो हुना श्रोतों है ना। ता आगाज भी इस भजन हो गया कर लेन और फिर तुम्हें सभी फरमाइश है जरूर पूरी कर ले कुछ एक खास जानकारी इन श्रोतों जो आसू तुस होगी शेयर करनी साझा करनी हिन सो जानकारी भी तुस हो गया है जरूर शेयर कर ले साझा कर ले। बहरहाल कार्यक्रम जो आगो बढ़ते हैं और आगाज कार्यक्रम रेस गीत हो गए तुम्हें सभी वह वीडियो सेट में वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच गूंज अपने बन रहे
2: पानी पता चाहिए।

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और हम आरजे सचिन कपूर हाजिर है कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा लेकर एक मौके फिर हिस्स गीता थो बात हूँ सभीरा पुनः स्वागत करनु हार्दिक अभिनंदन करनु हाँ आइए जी कार्यक्रम जो होगा बृंदन और इंदे श्रोतागण हस हो गए कनेक्ट लगे हिन अब भूना तब उस दिन कौन बल लुंदेन और कड़ी थो बल लुंदेन मौसम थो जुड़ रही खा जानकारी भी तुसो गया सो जरूर साझा करने हाँ श्रोतो नमस्ते जी
1: नमस्ते जी
0: नमस्कार जी कौन बलुंदेन और कड़ी थों बलुंदेन
1: मैं जी शमशेर बोला दरकाटे जी
0: अच्छा दरकाटे थों शमशेर जी क्या हाल चाल राजीव बाजी
1: हां जी बढ़िया जी तुहां सुना
0: बढ़िया जी और कदे मौसम दरकाटे मा
1: आज बढ़िया मौसम कल बढ़िया आज भरा
0: हां दो दिन के असो काफी अच्छी धूप के असो रहे है ना
1: हां जी हां जी
0: अच्छा और दरकाटे री कुछ नौईता जी शमशेर जी
1: बस ठीक है अब
0: चल रहा काम
1: हाँ जी
0: क्या फरमाइश लेकर आए ना आज
1: आज सुनाई दिया क्या दे तेरा मेरा लगन वाला राज
0: चलिए ठीक है जी जरूर है फरमाइश पूरी करने की कोशिश कर ले धन्यवाद
1: ठीक है धन्यवाद
0: इन द अगले शो था असुओ के कनेक्टेड हिंद नमस्ते जी नमस्कार जी नमस्कार हाँ जी हेलो

0: हाँ जी
1: हाँ जी, नमस्ते जी।
0: नमस्कार। ठीक ठाक है ना?
1: हाँ जी, बढ़िया जी। तो है भला, तो है ठीक ठाक ने। अच्छा,
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
1: चिकन बल्लू देन और कड़ी थो बल्लू देन।
0: गाड़ी से बोल रहे हैं मेघनाथ से।
1: अच्छा, और मेघनाथ जी कर करे लुगरिन।
0: अच्छा
1: हाँ बिल्कुल, धन बढ़ने रहा काम किया, सो बढ़ाया जोरों शोरों सो की शुरू पूछू रहा।
0: जी
1: हाँ जी, धन बढ़ने रहा, घा बढ़ने रहा, है ना। कुछ दाढ़ी री नोई ताजी गल बात हा। हेलो, माफ़ करे आशो, तो कनेक्ट आई थिंक दाढ़ी मुझे लगता कि थोड़ा करे सिग्नल ना टूटेरी वजह की सो ढंग हो गए कनेक्ट ना बचो कर देन। लेकिन आइए मौसम थो जुड़ रही जानकारी है तुसु दीन देन कहो कि तो सब ये दाना बढ़ने रहा जोर के सो ठीक ठाक कर रहो दितुरा हो और दीना भी पैना कहो कि 14 और 15 तारीख जो कि अशो तो यानी कि दत्ते और प्रो किया सो पूछ सकता कि कुछ एक इलाके में बुझ सकता है कि बरखा बुआ, ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी बुझी सकती है श्रोताओं। और 16 और 18 16 से 18 अक्टूबर तक अधिकांश क्षेत्र में गया सो मौसम शुष्क बने रहना है श्रोताओं। ता ये जानकारी आए सोचो तुसु तक पहुँचाइन कजो कि दाना रकम हा घा बढ़ने रकम हा और एक काम जल्द थो जल्द मतलब दोपहर बुझ गया अच्छा था बड़ा मज़ा इंदा। और अगर करखा नाग देवता जी रुष्ट बुझ गया और बरखा जी की दसो कर दे कि 14 और 15 तारीख बुझ सकता कि कुछ इलाके में बरखा बोआ सो इलाका कोई भी बुझ सकता मेंशन है ना कर सकते न। और 16 से 18 तक अधिकांश क्षेत्र में कि सो मौसम शुष्क बने रहना है शोतों। ताजें के है ये रुकर दिन की बरखा जी बुच्चू कर दे जी मौसम खराब चुंदा तियाँ मौसम की असो करवट बदलू कर दा और तापमान में कि असो काफ़ी ज़्यादा अंतर किया सो तो उसो चली छू करता है ना। काफ़ी ज़्यादा तापमान किया सो लुड़की का छू कर दा थल्ले चली छू करता है। तैती मंच ज़रूर तो है सब किया सो अपना खास ख्याल ज़रूर रखना है ना। और खासकर सियाने रहा और बच्चे रहा बिल्कुल खास थों भी खास ख्याल जरूर रखना। ए नाची सचिन कपूर हमेशा यही बलदा ही मैसेज मेरा हमेशा रंदा श्रोताओं की सियाणे और बच्चे यहाँ खास ख्याल जरूर रखना है। बदल दे मौसम में भी बदल दी वित्ता मंज भी और बदल दे चेहरे मंज भी कजो कि ये ऐसे चेहरे इन दोनों जो जिन्यासु जो असु खुशी दिन देन हमेशा दिन देन चाहे है कितने भी थकुरे में कितने भी है श्रोतों कस भी कम्मा थो इन कस भी फ्रस्ट्रेशन थो है गुजरू कर दे बुन। लेकिन घर है अगर सियाने बुन तो दिल खुश पुछगंदा माता पिता बुन दादा दादी बुन तो दिल खुश पुछगंदा और बच्चे बुन तो भी दिल के असु खुश पुछगंदा है। सो मौसम बदली करदा खास ख्याल जरूर रखे। बहरहाल अब है चल दिन श्रोतों और कार्यक्रम मंच। हाँ, तेरा मेरे लगन री फरमाइश था फरमाइश दौर है ज़रूर चलू रहा और फरमाइश पूरी करी भी दिन दे इन श्रोतों। फिर कुछ एक जानकारी लेके रहा है हाजिर बंदे तुंदे वीडियो सेट में वीडियो गुंजन धर्मशाला में बने रहा जुड़े रहा अस सोगे वीडियो गुंजन धर्मशाला सोगे गूंज अपने बन रहे और गूंज जितने भी प्यारे प्यारे श्रोता सूगी बन रहे।

শত এফএম ব্যান্ড ইকিয়ানি দৃশ্যমলাভ দুই মেগা হার্টস পর ভেড়ি গুঞ্জন ধরম শালা তো হ্যাঁ সবিয়ে টিউন কর রহা তুন্দ আপনা ভেড়ি গুঞ্জন অর ইন্দি আপনি গপ্পা যো তো হ্যাঁ হুনু করতে হিন আপনি আপনি রেডিও সেট মা ভেড়ি গুঞ্জন ধরম শালা মঞ্চ তা ইন্দি আপনি গপ্পা মঞ্চ শ্রোত বড় বড়া স্বাগত সবি হুনে আলে বা সবি শ্রোতগণরা तो चलिए कार्यक्रम जो थोड़ा करे हूँ और बढ़ने देना है थोड़ा करिए है का जो कि ख्याल रखना पैंता है श्रोतों सभी चीज़ा रहा है ना यानी कि यह है ख्याल रख देन श्रोतों दादी माँ रहे उस क्या क्या बंदे थी पहले इन जो सियाने बंदे थे जो इन दादी इन सभी भी दादी हिन जो सियाने बंदे थे ये श्रोतों इन देना सो बड़े अच्छे अच्छे और बड़े प्यारे नुस्खे के नसो दिंदे थे जी आखी गिलास में गर्म पानी और कुछ बूंदा नींबू रे रस भी पाई करे अक चुटकी दालचीनी पाउडर मलाई करे किया सो दिन में दो थो त्राई बार सेवन अगर तो है कर देन ता गला री खरा मतलब गला भी जो खराश आ सो काफ़ी खराश भी समस्या कफ री समस्या दूर के श्रोतों सो बुझेगन देहा है ना बड़ी यहाँ दादी मतलब इस प्रकार री के ऐसो असो ओ टिप्स के ऐसो दादी दिंदे अल्ले भी दिंदे बुनी बहुत सारी दादी इन अल्ले भी जो दिंदे बुनी ने इस प्रकार री टिप्स है ना और श्रोतों बोल दे अक चम्मच शहद में थोड़ा दे अदरक रस मिलाई करके सो जरूर चटना चिंदा शहद गले जो किया सो राहत दिंदा और अदरक सूजन कम करता है श्रोतों अगर श्रोतों तुसु सुंदे वक्त ज़्यादा पसीना किया सो इच्छु करता है तो ठेरा क्या कारण है कारण क्या कारण है ये जानना बहुत ज़रूरी है श्रोतों सोते समय सुनते समय अगर ज़्यादा पसीना इच्छु करता है श्रोतों तो सामान्य समस्या भी पूछ सकती है जिन कि अक्सर गर्म वातावरण में या भारी कपड़े पहन लाई करे कि ऐसा सूने रे कारण पसीना इच सकता हालांकि अगर समस्या लगातार बन रही है तो शरीर में भूने वाली कोई अंदरूनी स्वास्थ्य स्थिति किया ठेरा संकेत किया सो ठीक नहीं है ना मतलब कि अगर तुसु ये समस्या लगातार बनो कर दे और तो है मतलब कि भारी कम्बल बिना लूरा भारी कपड़े बिना लू रहे हिन और मतलब भारी बिस्तर आना तो है लूरा हा फिर भी पसीना इच्छु करता हा तो ये फिर कर खनकर का अंदरूनी की अशतों सो तुसु मार किया सो बचे सकते हा शरीर मन जो अंदरूनी मार किया मतलब अंदरूनी जो तुंदा इंटरनली स्वास्थ्य स्थिति है सो संकेत के ना सो ठीक नहीं श्रोतों ठेरे मुख्य कारण मा हार्मोनल असंतुलन भूना है ना एंजाइटी आदि समस्या बुझ सकते हैं श्रोतों सुनते समय ज़्यादा पसीने इन्हें वाक सामान्य लक्षण जतियों ज़्यादातर मामले में कई बड़ी बीमारी ना बुंदीन है ना ज़्यादातर मामले बुझ सकता कि सुनते मौके पसीने छुकड़ता तो कोई मोटी बीमारी नहीं है तेरे मुख्य कारण माँ के आश्रोतों सो कोई बड़ी बीमारी नहीं है लेकिन डॉक्टर अनुसार राती पसीना इने थो किया सो पसीना इने रे कारण किया सो हार्मोन बदलिन दे हिन

और बदलाव रहे लेकिन इन्फेक्शन और कुछ दवा व असर के सो शामिल हुंदा और ठेरे अन्य कारण हैं। हार्मोनल असंतुलन शोतों है ना, ब्लड शुगर बुझ सकदा, दवाई व साइड इफेक्ट बुझ सकदा, लाइफ स्टाइल रहे कुछ कारण बुझ सकते हैं, लाइफ स्टाइल तो जुड़ रहे कुछ कारण बुझ सकते हैं। शोतों राहत पाने वास्ते क्या करिए, ये सब है तुसु जरूर दस ले, जितनी भी गल्ला है करें तुसु की ठेरे बारे चर्चा किए श्रोता हूँ सो है जरूर कर ले। लेकिन बहरहाल तू सब भी जो लेकर चलते ने इस गीत तारीख नारे बने रहे जुड़े रहे आर जे सचिन कपूर सो की गूंज अपने पन रे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे।

तो तो है गल करू कर दे थी है आई है गल जो के सो थोड़ा करे हगो पढ़ दे नहीं कि आज खड़े टॉपिक तो शो तो कि सुनते वक्त ज़्यादा पसीना इने इने रह गया है सो क्या क्या कारण रहता है तो मैं कारण दसे थी है शो तो है ब्लड शुगर भी एक कारण है। अगर तो है डायबिटीज़ रे मरीज हैं और इंसुलिन या शुगर री दवाई के ना सो लेंदे हैं तो राती राती में जहाँ सुनते समय किया सो तुंदा ब्लड शुगर किया ब्लड शुगर रे लेवल किया सो अचानक जाने तू निंदर पैगन देना तो अचानक किया सो लुड़े गंदा हा शो तो गिरे गंदा हा यानी कि शुगर लेवल कम होने थो किया सो शरीर एमरजेंसी मोड में किया सो चलींदा जठेरी वजह थो मरीज जो ठंडा पसीना ईना लगता हा दिल रे धड़कन रे तेज किया सो दिल रे जो धड़कन सो तेज भुजगन दिया शो तो और घबराहट रे सोगी किया सो निंदर खुले गंदे हा है ना। दवाई का साइड इफेक्ट भी पूछ सकते शो तो कई दवाई जो खाने थो क्या ये डायबिटीज़ वास्ते नहीं सभी वास्ते कि कई दवाई जो खाने थो भी के सो आत्मा पसीना के सो निकलींदा हा है ना जी पीसीएम खाई ले हा या फिर कुछ हो कोई कोई भी दवा तो है कि सो ले ले हा तो कोई कोई भी दवा खाने थो कि शो तो सो राती में पसीना निकलने भी समस्या बुझ गंदे हा। डिप्रेशन और मानसिक तनाव री दवाई लेने वाले मरीजा जो ये समस्या किया सो सामान्य आम मतलब ठेरे अलावा बुखार और दर्द भी दवा लेने पर भी किया सो कभी कभी शरीर में शरीर का जो तापमान है शोता हूँ सो बदले गंदा हा और तस समय किया सो पसीना चलींदा हा। लेकिन जो डिप्रेशन और मानसिक तनाव री दवाई खंदन सो सोचा शोता हूँ सो तिन्यो भी पसीना इंदा और सो डेली खंदे हिन तो हूँ हमेशा बोलो न शोता हूँ कि तो है जो मर्जी करा लेकिन लाइफ में की उसको डिप्रेशन मत ले टेंशन मत ले कसी भी गल रे क्या भूला क्या करना भूला इनिया इं को बोलो इनिया इं को बोलो तिनिया इं को ना करो तिनिया ये मनजोग इं को ना कर दे सब गल्ला बेकार न सब बेकार न तो है सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी रहा कि तुम वो खुश इकड़ी मोड़ो कर दे हस इकड़ी मोड़ो कर दे हा तो है कड़ी खरे रहे हो कर देन सो करा जो तुस वो अच्छा करने रहा जो तुस वो खुश रहने व जो तुंदा मोटिव है ना शोतों तसी अचीव करा है ना। दुनिया में समाज में के शोतों सो सब कुछ पूछ गंदा हा परिवार में भी सब कुछ पूछ गंदा लेकिन अगर परिवार में फिलहाल इन द अगले श्रोता सूगे कनेक्टेड हैं परिवार में श्रोतों ये पूछ सकता हा कि चलो आपसी तालमेल के सो बेहतरीन रहा। मैं अक्सर बनलो कि अगर चौर गल्ला हल्के मनी तो दो गल्ला के असो मट्टे भी मनाना चाहती इति तो कि असो बैलेंस लाइफ रहा भी बने रहा हा और परिवार रहा भी बने रहा दोस्ती यारी रहा भी किया सो बने रहा हा शो तो। लेकिन कभी भी किया सो डिप्रेशन ना लेना चाहता मानसिक तनाव तो बिल्कुल ही ना लेना चाहता हा कसी भी गल्ला रहा कि इनियाँ को कने इनियाँ को करो तिनियाँ को ना करो ये सब बेकार गल्ला न सिर्फ हंसू करा मजाक करू करा और शोतों नफरत ना करने कसी होगी भी तुझ वो की जिनिया जो करो ना सेरे सो कर्म हैं वो सो तस भुगते लेना है तो है अपना काम करा अपना कर्म किया सो खरा करा इति माँ ध्यान दिया और खुश रहने में ध्यान दिया शोतों। लाइफ स्टाइल तो जरूरी भी कई कारण हैं बीमारी रे अलावा शोतों हम दसना चाहता बीमारी रे अलावा शोतों हम दसना चाहता कि कुछ आदता भी वाती जो पसीना निकालने भी समस्या हा पसीना निकलने भी जो समस्या हा शो तो सुने थो ठीक पहले तीखा या मसालेदार खाने थो भी किया सो शरीर में तापमान बढ़े गंदा और तापमान बढ़ने थो किया सो समस्या और ज़्यादा बुझ गंदी रात अगर तो है शराब पी रहा तो देर शाम फिर चाय कॉफ़ी लेने थो भी किया सो ब्लड थोड़े करके सो अप डाउन बुझगंदा हा वो पसीना के सो चलींदा कमरे रहा तापमान और कपड़े भी पसीना इने रहा के कारण इन शो तो बहुत गर्म या सिंथेटिक कपड़े पाई करे अगर तू है सुतुर हिन और कमरे में किया सो वेंटिलेशन ना भूने थों भी किया इस कारण भी किया सो पसीना इंदा वे राहत पाने क्या क्या सिस्टम है जी तो कमरे में तापमान सही रखा सूती और ढीले कपड़े पाई

करके या सो सौ करा सो तो सुने थो दो थो त्राई घंटे पहले भोजन करे लिया। ये जो 8-8:30 बजे खंदे ना जनाब, ये ज़रा कन्ना खोली करी होने लैन कि त्राई घंटे बाद दो थो त्राई घंटे दो तो मैक्सिमम, मतलब कि अगर तो 8 बजे खाऊ तो 10 बजे सूना ला, याद रखा। ता खाने थो सुने थो पहले किया सो दो थो त्राई घंटे पहले भोजन करी लैन। रात में ज़्यादा तीखे और मसालेदार और मीठा खाने थो बचन सो तो राती सुने थो पहले किए सो स्क्रीन टाइम बंद करी दीन और 5-10 मिनट गहरी सांस लेने रा अभ्यास किया सो जरूर करन। कुछ इस प्रकार रा अभ्यास किया सो जरूर करन सो तो। तो चलिए कार्यक्रम जो आगे बढ़ने देना और लेके चलते तू सब भी जो इस कार्यक्रम रहे इस गीत तारीख के नारी।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर है वेड़ी गुंजना और आऊँ सचिन कपूरा चलिए मनरे डोर ता ठीका मनरे डोर डोर की सो ठीक ही रहना सिंधिया बरहाल यह जो जानकारी तू सु तक है अगले पहुँचाने लगे श्रोतो तो जानकारी थोड़ी करी प्रेम रे ब्याह और अक जानकारी प्रेम रे श्रोतो और अक जानकारी थोड़ी करी ठग्गा चोरा रे तो पहले ठग्गा चोरा रे की सो हूँ लेन देन है ना हिमाचल प्रदेश में 9 महीने में साइबर ठगी है कि जो साइबर ठग बनते हैं तीन हिमाचल प्रदेश रे भोले भाले मनु जो कि 77.85 करोड़ ठग रुपये के नो ठगी लाए हैं साइबर ठग प्रदेश रे मनु प्रदेश रे मनु जो शिकार बन रहे हैं श्रोतो प्रदेश में मनु के अनसो शिकार के अनसो बन रहे हैं प्रदेश में हर दूसरे दिन मनु रा साइबर ठग रा शिकार किया सो बच्चू कर दा साइबर ठग हिमाचल री जनता जो साइबर ठगी व शिकार किया सो बनाओ करते हैं छोटो प्रदेश में पिछले 5 साल भी तुलना में साइबर क्राइम रे मामले के अनसो बड़े हैं छोटो जी बिल्कुल बड़े हैं साइबर सेल रे विश्लेषण में हिमाचल में बड़ू करते हैं साइबर क्राइम रे आंकड़े काफ़ी ज़्यादा बड़ू करते हैं छोतो यानी कि प्रदेश रे मनु के सो शिकार बनू करते हैं शातिर रे हर दुए दिन की सो नया केस इच्छू करता है जो कि सभी वास्ते चिंताजनक है बार बार जागरूक करने वे बात भी किया सो झांसे में किया सो चल इच्छू करता है हिमाचल प्रदेश रे मनु छोतो फर्जी कॉल थो मनु भी गाड़ी कमाई पर किया सो डाका मारू करता है मारू करते हैं ये साइबर ठग रे मामले जो लेकर पुलिस है कि सो एडवाइजरी जारी करे हा और मनु थो किया सो बल्लो आ कि तू है सावधान रहने रे अपील की सो मनु थो करे हा साइबर ठग के न सो मनु वे बैंक अकाउंट सहित अन्य व्यक्तिगत जानकारी हासिल कर लो करते हैं और साइबर ठग मनु रे फ़ोन नंबर पर किया सो टेक्स मैसेज भेजे करे तीनों ठगी रे शिकार किया सो बनाओ करते हैं शातिर के ना सो कदी बिजली रे बिल तक कदी क्रेडिट कार्ड वे लिमिट बढ़ाने व झांसा दे कर किया सो मनु जो जाल में फसाऊ कर दे हिन सो सब के ना सो सतर्क रहन घरे जो महिला रेव कर दिन जो महिला जॉब करू कर दिन इवन के अन्य सब मनु के ना सो इस समय के सो सतर्क होने भी जरूर के सो जरूरत था है ना कजो कि ना डायरेक्ट ना करू करते हैं बहुत शातिर बंदे जड़ी इन सोच मुके गंदे धड़ी आ रही खत्म बंदे छोतों ता इस गल रे बारे में बिल्कुल तो है विशेष ध्यान के सो जरूर दिन आवश्यक दिन छोतो है ना प्रदेश का साइबर थाने में सितंबर महीने तक इसमें साइबर थाना शिमला में किया आऊँ दसना चाहता कि प्रदेश में किया सो साइबर थाने में सितंबर महीने तक किया श्रोताओं सो साइबर थाना शिमला में 19 FIR भुइन जमा मंडी में 14 धर्मशाला में 11 मामले दर्ज हुए साइबर क्रिमिनल मनु जो ठगाने वे वास्ते किए सो नित नोई तरीका क्या सो अपनाओ कर दें तब भोले वाले मनु वो थोड़ा करे तेज जरूर बना शातिर जरूर बना भोले मत बने रहा ये तुसु बिजली रे बिल दे करे या फिर क्रेडिट कार्ड रे लिमिट बढ़ाने जो इस प्रकार सोगे किया सो तुसु गे बातचीत कर सकते हैं और ये अकदम तुसु गे बातचीत ना करो कर दे मत सोचा कि आप जो ये तुंदे पूरी डिटेल है ना हर किसी आजकल तो चैट GPT या AI या AI में इतने टूल न सो तो उनकी कुछ भी किया सो इंसान मतलब कुछ भी कड़ी भी बेकुरे कुछ भी किया सो कर सकता है तो थोड़ा कहीं सतर्क रहने भी ज़रूरत था और सावधान रहने भी ज़रूरत था सो तो है ना तो इन धर्मशाला में भी 11 मामले हैं इस साल के असो 9 महीने में साइबर क्राइम भी 14,000 तो अधिक शिकायतें दर्ज हुईं जबकि साइबर ठगी और IT एक्ट वे 44 मामले दर्ज हुए इन शतों शातिर है कि असो प्रदेश की जनता थो सितंबर महीने तक 77.84 करोड़ रुपये राशि के सो ठगी ली इन शतों UPI थो कि असो 7 कड़ी कितनी ठगी ये भी 10 दिन तो सो है UPI थो कि असो 7.97 करोड़
गोल्फ रोड रे 10.31 करोड़, शॉपिंग फ्रॉड थो 1.52 करोड़। ये ऑनलाइन जो फ्लिपकार्ट आ या अदर जो भी साइट्स ना फ्लिपकार्ट जो माफ कर फ्लिपकार्ट लीगल आ लेकिन अदर जितनी भी साइट्स ने भी क्या पता शॉपिंग कति में क्या है कोई फेसबुक रे माध्यम थो आ कोई किया है ना तो ये बलदेन की भाई इतने में ऑफर इतना तो तू अब जो ऑनलाइन खरीद दिया तो तुमने घर डिलीवर किया सो भुचगाने शायद इन्हें ठगी व शिकार आऊँ भी भुचगो पर आऊँ थोड़ा तेज़ तो तुम्हें 100 रुपये दी तुरा न जाने शायद भुज सकता हाँ कभी कभी चलो मतलब हजार रेडी चीज़ मोड़ो कर दे बुआ सो 100-200 दाम में हर कोई इंसान ह्यूमन नेचर दिए तले अंधेरा सो हिसाब मेरा तो शॉपिंग फ्रॉड बचे गंदे शो तो 1.52 करोड़ मामले हैं है ना। और बैंक फ्रॉड रे 3.17 करोड़ रुपये। फेक लिंक थो बोलते ना कि इस लिंक जो ओपन करा तो तुस वो ये बचगाना तुस वो ये बचगाना या वट एवर जो भी है तो 1.38 करोड़ हा जनाब जो फ्रॉड में 1.53 करोड़ हा एटीएम डेबिट क्रेडिट कार्ड के या 1.54 करोड़ हा ज़्यादा हा ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। सो सतर्क रहे जनाब सावधान रहे बहुत ज़रूरी है सभी वास्ते आंसू वास्ते तो सु वास्ते भी सभी वास्ते है ना है रीज़न दसीते तो सु कि क्या क्या बंदे हैं। चलिए चल देना और कंचन मोगू रहेगी ढूंढ लेंदे इन शोतों कंचन मोगू सुबह कंचन मोगू के सो सुधेड़ी रहने वाले हैं। और चलिए फिलहाल हूँ देने यारी आवाज़ में गीत

चलिए शो तुम वक्त रखिए, वक्त तो निकले गंदा हूँ। अक्सर बोलना कि अगर तुम्हारी लाइफ में बुरा वक्त आता निडर अरे या शो तुम का जो कि वक्त की सो जरूर गुजरी गंदा हा ता आज अगर बुरा वक्त आता खरे वक्त रही नहीं रखिया सो वेट करा शो तुम। और कुछ एक चीज़ अपने हाथ तभी जरूर बंदी इन शो तुम अपना नेचर जो कि सो पोलाइट रखा अपने अंदर हम किए सो मत पाड़ा और अपना हंसदा चेहरा किया सो हमेशा रखा शो तो है ना। ये गल्ला असु पर भी डिपेंड कर दी हिन ता जरूर इन्या गल्ला रा खास ख्याल किया सो जरूर रखा। बहरहाल कार्यक्रम जो है बड़न और लेके चलते तू सब भी जो इस गीतारी किनारी। फिलहाल आरजे सचिन कपूर चौतीजिया इजाजत नमस्ते धर्मशाला।

नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। ओम देवी चंद्रघंटाये नमः। जय माता दी।

0: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
1: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
0: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम।
2: आप चिंता ना करें।
0: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
2: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
3: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
4: तुम क्या खड़ा हो?
3: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाए पक्का?
3: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
6: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
7: दहेज मुक्त बिहार, संकल्प हमारा।
8: शालू
9: बात माने ना तो करवा ले।
8: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
9: अरे वाह, नौकरी लग गई
8: जी।
9: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
8: अरे काका भी है।
9: अच्छा,
8: काका लड्डू खाओ।
10: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ की नौकरी?
8: बैंक में काका।
11: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
12: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
11: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
8: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
13: बैंक में नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
12: क्यों भाई?
13: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
12: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
14: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
8: जी।
15: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
16: वही असली तरक्की।
15: एक कदम स्वच्छता की ओर।
17: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं बस दूर जाना चाहता है, और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
5: क्यों, क्या हुआ?
6: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
5: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ।
7: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
8: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
7: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया?
8: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। जय माता दी।

0: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
1: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
0: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
2: आप चिंता ना करें।
0: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
2: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
3: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज। काहे नहीं सुनते आप हमारी?
4: तुम क्या खड़ा हो?
3: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाएं, पक्का?
3: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
6: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
7: दहेज मुक्त बिहार, संकल्प हमारा।
8: शालू
9: बात माने ना तो करवा ले।
8: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
9: अरे वाह, नौकरी लग गई
8: जी,
9: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
8: अरे काका भी है।
9: अच्छा,
8: काका लड्डू खाओ।
10: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
8: बैंक में काका।
11: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
12: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
11: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
8: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
13: बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
12: क्यों भाई?
13: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
12: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
14: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
8: जी।
15: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
16: वही असली तरक्की।
15: एक कदम स्वच्छता की ओर।
17: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं, बस दूर जाना चाहता है। और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि कुछ लोग वापस नहीं आ

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मांग गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
2: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
5: क्यों, क्या हुआ?
2: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
5: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ।
6: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
7: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
6: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया।
7: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला शुरू हो चुका है श्रोताओं, और सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं आपके साथ रहूंगी अब से लेकर 8 बजे तक, और हमेशा की तरह आपसे बातचीत का आनंद उठाएंगे, अपने प्यारे प्यारे श्रोताओं के साथ जानकारियां साझा करेंगे और प्यारे प्यारे से गीत अपने श्रोताओं के साथ हम सुनेंगे भी और सुनाएंगे भी। कार्यक्रम में सबसे पहले श्रोताओं आइए जानते हैं इस समय धर्मशाला का तापमान। 12 डिग्री सेल्सियस तापमान है और वातावरण में नमी है 76%। और श्रोताओं, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सैर का जो त्यौहार हम मनाते हैं उसके बाद शीत ऋतु का आगमन जो है वो होता है, और धर्मशाला में वो आगमन जो है वो हो ही चुका है। 2 दिन पहले पहाड़ों पे बर्फ़ गिरी है, ताज़ा बर्फ़बारी, और उसकी वजह से जो हल्की हल्की ठंड हम महसूस कर रहे हैं, हल्की नहीं बल्कि हल्की से थोड़ी तेज़ ठंड हम महसूस कर रहे हैं, और ये जो सर्दी है ये इतनी असहनीय भी नहीं है कि हम सहन ना कर पाएँ। वो कहते हैं ना, एक प्लेजेंट सा मौसम है कि ना तो बहुत गर्मी है और ना ही बहुत ठंड है, तो इस हल्की हल्की सी ठंड को आप इंजॉय कीजिए। शाम का समय है, चाय की चुस्कियाँ याद आती हैं इस समय मुझे, और आप भी चाय की चुस्कियों का आनंद लीजिए। रेडियो गुंजन में कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला शुरू हो चुका है, उसके गीतों का, हमारी बातचीत का भी आनंद लीजिए।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ।

जी हाँ श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी आज का ये कार्यक्रम लेकर के हाजिर हुई हूँ। और श्रोताओ, अब अपने श्रोताओं को और अपने दर्शकों को ये बता दें कि हम फेसबुक पेज पर भी लाइव हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। धर्मशाला में इस समय आप हमें सुन रहे हैं, वैसे तो आप देश दुनिया के किसी भी कोने में हमें सुन पाते हैं रेडियो गार्डन और रेडियो गार्डन ऐप के माध्यम से और रेडियो गुंजन की हमारी ऐप के माध्यम से। लेकिन धर्मशाला के साथ साथ 88.4 ढटवाल की आवाज़ हमीरपुर में भी इस समय आप हमें लाइव सुन रहे हैं। तो हमीरपुर के हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार है। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपके लिए विचार है आज का, तो आपके साथ आज का विचार साझा करते हैं। कभी कभी शांत रहकर भी जवाब देना होता है। ज़रूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब हम कुछ कहकर ही बदले में दें। शांत रह करके हम उसी बात का जवाब दे सकते हैं और यही शांति हमारा सबसे बड़ा जवाब होता है। श्रोताओं, जी हाँ श्रोताओं, आज का विचार फिर से एक बार दोहरा रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर बात का हम जवाब दें, कई बार शांत रहना भी सबसे बड़ा जवाब होता है। श्रोताओं, ज़िंदगी में बहुत सी परिस्थितियाँ आती हैं जब हम परेशान होते हैं, और ये बात मैंने इसीलिए ली कि उसी वक्त जब हम परेशान होते हैं उसी वक्त हमारे ऊपर ज़्यादा सवाल, ज़्यादा बातें उठती हैं, और उस वक्त उन बातों का जवाब देने के लिए हम लोग आतुर हो जाते हैं। हमें लगता है कि किसी ना किसी तरह से हम जवाब दे दें और अपने आप को प्रूव कर दें। लेकिन उसी समय वही समय होता है जब हमें शांत रहना होता है और ये महसूस करना होता है कि शांत रहना भी सबसे बड़ा जवाब है। हर बात का जवाब दे करके हम अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते, इसलिए परिस्थितियां चाहे अच्छी भी हों, मैंने एग्जांपल दिया कि जब हमारा ख़राब समय चल रहा होता है, लेकिन कई बार बहुत अच्छा समय भी होता है जब हम ज़िंदगी में खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तब भी कुछ ना कुछ लोग बातें ही बनाते हैं और वो हम लोगों में से ही होते हैं। श्रोताओं, हम ये नहीं कहते कि हम बातें नहीं बनाते, जाहिर सी बात है हर इंसान कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कुछ ना कुछ कहता ही है। तो इसका सबसे बड़ा मैं कहूँगी जवाब यही है कि जो भी जैसी भी परिस्थितियाँ हो जीवन में, उन्हें शांत रह करके आप एक्सेप्ट भी कीजिए। और कई बार ज़रूरी ही नहीं होता किसी बात का जवाब देना, शांत रहिए, वक्त सबसे बड़ा जवाब होता है। श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी।

मेरे साथ आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, और अब लिए चलते हैं श्रोताओं आपको कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर। आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपने पन की।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं प्यारे प्यारे से गीत और गीतों के साथ साथ आज जो खास दिन है उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे और कर लेते हैं। तो आज का जो खास दिन है श्रोताओ वो है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम को कम करने का। आज का जो दिन है वो खासकर मनाया जाता है आपदाएं यानी प्राकृतिक आपदाएं और किस तरह से इन प्राकृतिक आपदाओं से हम अपना बचाव कर सकते हैं उसी के ऊपर आज का ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो विश्व भर में मनाया जाता है। और इसके साथ साथ ही एक और ख़ास दिवस भी है और वो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में। जी हाँ श्रोताओं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे भी आज के दिन मनाया जाता है और मनाया जा रहा है। और आप सभी जानते हैं कि बीते कुछ एक सालों में ब्रेस्ट कैंसर के बहुत ही ज़्यादा जो है वो मामले सामने आए हैं। बहुत सी हमारी महिलाओं ने ब्रेस्ट कैंसर होने के बावजूद उसकी सही तरह से जांच ना कर पाने की वजह से अपनी जान भी गंवाई है और अभी भी बहुत सी महिलाएं जो हैं वो अवेयर नहीं हैं। तो महिलाओं में खासकर अवेयरनेस आए, ना सिर्फ महिलाओं में बल्कि परिवार के सभी सदस्य महिलाओं की सेहत के प्रति अवेयर रहें उसके लिए आज का जो ये दिन है ये खासकर मनाया जाता है। तो इसके बारे में भी कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे और इस बातचीत का मकसद सिर्फ बातचीत करना ही नहीं होगा श्रोताओं, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उनको हम सिर्फ सुने ही नहीं उनको अपने व्यवहार में भी लाएं, क्योंकि कहते हैं ना धन गया तो कुछ नहीं गया और स्वास्थ्य गया तो समझ लीजिए सब कुछ गया। इसलिए स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और मेंटल अवेयरनेस के बारे में भी हम बात करेंगे, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी कार्यक्रम चल रहा है। और ये सारे कार्यक्रम जो होते हैं ये सिर्फ एक दिन चुना जाता है श्रोताओं, लेकिन हर दिन हमें इन दिनों के बारे में थोड़ा थोड़ा अवेयर रहना होता है। चलिए बातें जब होती हैं तो होती ही रहती हैं, लेकिन अब मनोरंजन भी होगा। और एक विलन फिल्म का ये गीत है श्रोताओं, अरिजीत सिंह की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ आप सभी के रेडियो सेट्स पर पहुंच रही है। सुनिए और बने रहिए हमारे साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्स पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में अगला गीत बिल्कुल तैयार है, और अगला जो गीत है श्रोताओ वो लिया है मैंने आज ताल फिल्म से। और ताल फिल्म ये गीत मैंने पहले भी अपने श्रोताओं को सुनाया है, शायद नहीं, कई बार। और जहाँ तक बात करें इस फिल्म की कहानी की, वो कहानी मुझे बहुत दिल को छूती है। सबसे पहली बात तो इस फिल्म की ये है कि इसमें हमारे हिमाचल प्रदेश के चंबा का जिक्र है, और शूटिंग भी चंबा की जो है वो बताई जाती है। हालांकि पहाड़ दिखाए हैं, एग्जैक्टली वो चंबा है या नहीं है, लेकिन चंबा के बारे में ज़ोर शोर से इस फिल्म में जो है वो बात हुई है। और पहाड़ी लोग दिखाए गए हैं हिमाचली टोपी पहने हुए। और जिस समय ये फिल्म आई थी उस टाइम शायद हम कॉलेज में थे, और उस टाइम हमें लगता था कि ये हमारे ऊपर ही बनी गई फिल्म है। ऐश्वर्या राय को शायद बहुत सी मेरे जैसी उस समय की लड़कियां समझती थी कि ये मैं ही हूँ, और ये हमारे चंबा या धर्मशाला या हिमाचल के ऊपर ही फिल्म बनी हुई है। बहुत ही प्यारी सी कहानी है। ऐश्वर्या राय का संगीत का जो सफ़र है वो इसमें दिखाया गया है, किस तरह से वो चंबा से बॉम्बे पहुँचती है, मुंबई पहुँचती है, और संगीत के लिए उसका संघर्ष शुरू होता है। साथ ही साथ उनका जो प्रेम दिखाया गया है इस फिल्म में, उसके लिए भी काफ़ी लंबी चौड़ी उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। तो ये सब कुछ मिला जुला इस फिल्म की कहानी को बहुत ही प्यारा और मज़ेदार बना देता है। और साथ ही साथ इस फिल्म के गीतों की बात करें तो भाई क्या बात है। तो चलिए, अब मैं रोक रही हूँ यहाँ पर और सुनवा रही हूँ आपको इश्क बिना क्या जीना यारो। जी हाँ, यही बहुत प्यारा सा गीत है इस फिल्म का, यही आपके रेडियो सेट्स तक पहुँच रहा है रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन 2026 का इस साल का जो है वो मनाया जा रहा है, और ये जितने भी डिज़ास्टर होते हैं उनमें अहम जिसे माना जाए, वैसे तो अगर हमें किसी भी प्रकार की हानि और क्षति पहुंचती है तो वो ख़तरनाक ही होता है, लेकिन भूकंप का कई बार जो है वो अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल होता है, और सोए सोए बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और बीते दिनों आपने भी देखा होगा कि एक ही दिन में 3 बार भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए, और हल्के फुल्के नहीं बल्कि ज़ोरदार वो झटके थे। और पहाड़ी क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतें हम लोग बना देते हैं, और उसके बाद जब भूकंप जैसी आपदाएं आती हैं तो उस समय क्षण भर में पता नहीं चलता इतनी बड़ी बड़ी इमारतों का, उसमें हमारा पैसा तो बर्बाद होता ही है, साथ ही साथ अगर लोगों की जिंदगियां, अनमोल जिंदगियां जाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और उसकी क्षति जो है उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। तो श्रोताओ, सबसे पहली बात इसमें यही हम करेंगे आपके साथ कि जब भी आप घर का निर्माण करें तो ऐसे ही घर ना बना दें, पूरा जांची परखी तकनीक जो कि भूकंप रोधी तकनीक हो उससे ही आप अपने घर का निर्माण करें। और इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं कि घर आपने बनाना है तो कितनी गहराई तक आपके घर की जो नींव है या जो पिलर्स हैं वो कितने मजबूत होने चाहिए, उसमें कितने mm का सरिया यूज़ होना चाहिए, वो सारी बारीकियाँ। कई बार हम घर में बचत की सोचते हैं कि चलो बना देंगे इतना बचत हो जाएगा, लेकिन घर वो कहते हैं ना श्रोताओं, एक ही बार बनता है, और बेशक बड़ा ना बनाएं, छोटा बनाएं, मजबूत बनाएं जिसमें आप सेफ़ सुरक्षित हों, आपका घर सेफ़ सुरक्षित हो और उसमें रहने वाले हर सदस्य जो हैं वो आराम से सुरक्षा के साथ उस घर में रहें। और भी बातें हैं श्रोताओं, छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है, और उन्हीं बातों को अगर हम नज़रअंदाज करते हैं तो फिर हमारे लिए ही मुश्किलें बढ़ती हैं। चलिए मुश्किलों को हम यहीं विराम लगाते हैं और आपको कार्यक्रम में सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन।

श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। और श्रोताओ गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में आज आपके इस सफर की हम सफर हूँ मैं पिंकी। बात करते हैं श्रोताओं स्तन कैंसर से बचाव के ऊपर जो आज हम दिन मना रहे हैं उसके बारे में। 1 अक्टूबर से इस महीने के अंत तक ये जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस हम कह सकते हैं ये गतिविधियां जो हैं वो महीना भर रहती हैं और इनमें महिलाओं को खासकर अपने शरीर के प्रति ब्रेस्ट कैंसर के प्रति अवेयर किया जाता है। और हम महिलाएँ अक्सर अपनी सेहत को नज़रअंदाज करती हैं। जब भी शरीर में कोई छोटी मोटी हमें दर्द दुख महसूस होता है तो हमें लगता है कि चलो बाद में देख लेंगे, कोई ना कोई पेन किलर खा करके अभी का समय निकाल देते हैं और कल देखेंगे। कल तक वो दर्द जो है वो पेन किलर के सहारे जो है वो काफ़ी

हद तक ठीक हो गया होता है तो हम फिर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है वो बिज़ी हो जाती हैं। और यही आदत हमारी कई बार हमें बहुत गंभीर बीमारियों तक ले जाती है। जब भी आपको कोई भी स्तन कैंसर के बारे में तो अवेयरनेस चल ही रही है दोस्तों, लेकिन जब भी आपको लगे, खासकर महिलाओं को, कि आपके शरीर में कहीं पे भी आपका शरीर का कोई अंग जो है वो सामान्य तरह से काम नहीं कर रहा है, उसमें कोई ना कोई आपको लग रहा है कि दर्द है, चुभन है, तो देर ना करें, समय पर, सही समय पर, या यूं कहें कि समय रहते अपने स्वास्थ्य की जांच जरूर करवाएं। ये है आपकी, आपके प्रति सबसे पहली जिम्मेदारी। बाकी और जिम्मेदारियों की भी बात करेंगे श्रोताओं कार्यक्रम में आगे, लेकिन जिम्मेदारियां ही निभाते रहेंगे तो आपका मनोरंजन कब करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम में अब आपको एक प्यारा सा गीत सुनवा रहे हैं, और हमारी ये स्वास्थ्य के बारे में जो चर्चा है ये भी चलती रहेगी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में भी आज बहुत खास और बड़ा दिन मनाया जा रहा है विश्व भर में, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मनोरंजन रुकना नहीं चाहिए। तो चलिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत और बने रहिए यूं ही हमारे साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जी हाँ श्रोताओं, ये संगीत सुन करके आपको पता चल ही गया होगा कि कार्यक्रम में आगे आप कौन सा गीत सुनने वाले हैं। बता दें आपको, गजनी फिल्म का गीत कार्यक्रम में हम आपको आगे सुनवाएंगे। गीत को गाया है श्रेया घोषाल और बिनी दयाल ने। इस गीत को मैंने चला करके इसलिए रोक दिया है श्रोताओं, क्योंकि गजनी फिल्म कुछ साल पहले आई थी और गजनी फिल्म का जो हम कहें कि कहानी थी वो बहुत मज़ेदार थी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और बहुत से लोग होंगे जिन्हें अच्छी लगी होगी। और इसके गीत भी बहुत ही प्यारे थे, चाहे वो रोमांटिक सॉन्ग हो या मस्ती भरे गीत। लट्टू और लट्टू एक गीत है, उसमें खूब मौज मस्ती जो है वो दिखाई गई है। और गजनी फिल्म की पूरी कहानी यही थी कि इसमें जो है किस तरह से हीरो को हीरोइन से प्यार होता है। हीरो एक करोड़पति अरबपति होता है और जिस लड़की से उसे मोहब्बत होती है वो एक आम सी लड़की होती है जो वीडियोस छोटे मोटे रोल करती है, और वो उसकी सिंप्लिसिटी और उसकी सादगी को देख करके उससे प्यार कर बैठता है। और इस फिल्म की कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि उस लड़की को नहीं पता होता है कि वो इतना बड़ा उद्योगपति है, इतना अमीर इंसान है, और वो उसे धीरे धीरे सिखाती है कि अगर तुम्हें भी एड्स में काम करना है तो तुम्हें यहाँ आना होगा, इस तरह से तुम्हें एक्टिंग करनी होगी। और वो भी बड़ी ईमानदारी से उसे नहीं बताता कि मैं इतना अमीर हूँ, और एक शर्त वो अपने आप से ही रखता है कि अगर इस लड़की को मैं ये ना बताऊँ कि मैं इतना अमीर हूँ, उसके बाद भी मेरी गरीबी में ही मुझे ये एक्सेप्ट करती है, तब मैं ज़रूर इसके साथ रिश्ता आगे कंटिन्यू रखूँगा। लेकिन अगर ये मुझे गरीब समझ के मुझे ठुकरा देती है तो फिर मैं समझूंगा कि दुनिया में सभी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। इस तरह की कुछ इस फिल्म की कहानी है, और कहानी में इंटरेस्ट बनता जाता है श्रोताओं। एक समय आता है जब ये अपने सपनों की गाड़ी, एम्बेसडर गाड़ी, सेकंड हैंड गाड़ी खरीदती है, जो कि इसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, और बहुत सी लड़कियों के लिए गाड़ी, स्कूटी, कुछ भी खरीदना वाकई में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो जब ये अपने सपनों की गाड़ी खरीदती है तो उसी समय जो फिल्म का हीरो है वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, मुझे गांव जाना है। तो ये उन गाड़ियों को बेच करके उसके हाथ में पैसे थमा देती है, और जब वो कहता है कि ये पैसे कहाँ से आए तो उसने कहा कि मैंने उन गाड़ियों को बेच दिया है। और जब हीरो को लगता है कि ये तो वाकई में बहुत बड़े दिल वाली है जो कि अपने सपनों

को भी नज़रअंदाज करके मेरी हेल्प कर रही है, उसके बाद उसके दिल में उस लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा गहरी और सच्ची वाली असली वाली मोहब्बत जो है वो पैदा हो जाती है। और इसके बाद फिल्म की कहानी थोड़ी दर्द भरी है, लेकिन उसके बाद भी इंटरेस्टिंग कहानी है और गीत भी बहुत ही प्यारे हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो एक बार थोड़ा सा देखिएगा, रुलाती भी है ये फिल्म। और वहीं एक बिना शर्तों के प्यार क्या होता है और कैसे बिना लालच शायद गलत शब्द होगा, कई बार हम गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप में होते हैं कि वहाँ से इतना मिलेगा तो हम इतना देंगे, तो इस चीज़ को बिल्कुल नकारती है ये फिल्म कि अगर आपके दिल में सच्ची मोहब्बत है तो आप फ़कीर से भी मोहब्बत कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकते हैं। तो ये मेरा फ़िल्म को देखने का नज़रिया था, आप अपने नज़रिए से देख करके इसको एनालाइज़ कर सकते हैं श्रोताओं, लेकिन एक बार देखिएगा ज़रूर। और अब मैं अपनी बातों को देती हूँ विराम, सुनाती हूँ आपको गजनी फ़िल्म का ये प्यारा सा गीत, कैसे मुझे तुम मिल गई।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। और कार्यक्रम में श्रोताओं, अब समय है समाचारों का।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आज की ब्रेस्ट कैंसर से किस तरह से बचाव किया जा सकता है, या ब्रेस्ट कैंसर के प्रति हम लोगों को अवेयर रहना है, सचेत रहना है, समय रहते इसकी जांच करवानी है। खासकर जब महिलाएं 40 की उम्र पार करती हैं तो उससे पहले इस बीमारी का पता भी नहीं लगता है श्रोताओं, और 40 या 40 प्लस एबव होने के बाद हमें एक बार ज़रूर, अगर आपको लगता है आप बिल्कुल फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, फिर भी एक बार अपना जो चेकअप है वो करवाना चाहिए। और आपके शरीर में आपको लगता है कहीं पे कोई गांठ है तो ज़रूर जांच करवाएं, ताकि आपको पता चल सके कि आपके शरीर में कहीं पे कोई बीमारी तो नहीं घर कर रही है। बातचीत जारी रहेगी श्रोताओं, फिलहाल कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, कार्यक्रम में अब एक जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर आज जिला कांगड़ा में समर्थ कार्यक्रम के तहत विभिन्न शिक्षण संस्थानों और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों, युवाओं और आम लोगों को आपदाओं से बचाव, सुरक्षित रहने के तरीकों और आपातकालीन परिस्थितियों में सही कदम उठाने के बारे में जानकारी देना रहा। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए पहले से तैयारी करना बहुत जरूरी है। आपदा प्रबंधन में हर नागरिक, परिवार, विद्यालय और समाज की भागीदारी आवश्यक है। सही जानकारी और समय पर की गई तैयारी से जान माल के नुकसान को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस का संदेश है कि आपदा से बचाव की तैयारी घर से शुरू होती है। प्रत्येक परिवार को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पहले से योजना बनानी चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकालने के रास्तों की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही प्राथमिक उपचार की सामग्री, जरूरी संपर्क नंबर और आपातकाल में आने वाली आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब जानकारियों के बाद चलते हैं श्रोताओं, फिर से मनोरंजन की ओर। सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोता 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। बहुत ही प्यारी सी रचना हम कहेंगे मेरे रश्के कमर इस समय आप सुन रहे थे। श्रोताओं गीत के पीछे इसके जो उर्दू के शब्द हैं उनका अर्थ बहुत गहरा है और इतिहास के रचयिताओं से जुड़े इन शब्दों की कहानी है। ये गाना फिल्म में है लेकिन ये कोई आम फिल्मी गीत नहीं है बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत रूहानी गज़ल है। बहुत से लोग इस गाने को रस के कमर समझ लेते हैं लेकिन इसका जो सही उच्चारण है वो रश्क ए कमर है। उर्दू में इन शब्दों का बहुत ही गहरा मतलब होता है। रश्क इसका अर्थ होता है ईर्ष्या, जलन या नाज करना। कमर का अर्थ होता है चांद। रश्क ए कमर इसका शाब्दिक अर्थ होता है चांद की ईर्ष्या। शायरी में इसका इस्तेमाल प्रेमी अपनी प्रेमिका की खूबसूरती को बयां करने के लिए करता है, यानी एक ऐसी महबूबा जिसकी सुंदरता को देखकर खुद चांद भी जलन महसूस करने लगे। इस गीत के जो असली लेखक हैं, रचयिता हैं, कव्वाल शायर फना बुलंदशहरी जी ने इसे लिखा था। उन्होंने इस गज़ल में मोहब्बत, साकी और महबूबा की पहली नज़र से जादू को बेहद खूबसूरती से पिरोया गया है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की आवाज़ का, हम कहेंगे दमदार आवाज़ का जादू इस गज़ल में था। और ये गज़ल 1988 में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने गाई थी। गज़ल नहीं, कव्वाली ये है। और नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में इसे जो है वो सूफियाना अंदाज दिया गया था। बॉलीवुड में दोबारा इसकी एंट्री हुई साल 2017 में, जब 17 में जब अजय देवगन और इलियाना डी क्रूज की बॉलीवुड फिल्म बादशाहो आई थी। तो श्रोताओ ये थी इस प्यारी सी कव्वाली के पीछे की कहानी। कई बार बहुत सी कव्वालियाँ, बहुत सी गज़लें ऐसी होती हैं जिनको नए सिरे से फिल्मों में लाया जाता है लेकिन उनका जो संबंध होता है वो बहुत पुराना होता है, बहुत गहरा होता है। और ये जो गज़ल अभी आपने सुनी ये भी उन्हीं में से एक थी। ऐसी बहुत सी गज़लें हैं जो हमारी फिल्मों में दोबारा से ली गई हैं और ख़ासकर नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की जो गाई हुई गज़लें हैं उनको दोबारा से आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है, हम यूँ कहें, या इवन टीनेजर्स भी उन गज़लों को सुनते हैं थोड़े से नए अंदाज में। लेकिन नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की आवाज़ का जादू, दमदार आवाज़ का जादू तब से लेकर अब तक बोल रहा है। और संगीत प्रेमी जानते हैं कि उनकी आवाज़ में जो कशिश है, जो रूहानियत है, वो संगीत सुनने वाले ही समझ सकते हैं। श्रोताओं 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। श्रोताओं कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। और अब वास्तव, जी हाँ वास्तव की ओर रुख करते हैं। वास्तव फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। इंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। श्रोताओ, स्वास्थ्य की बात हो रही है और स्वास्थ्य में एक बहुत अहम हम कह सकते हैं स्वास्थ्य से ही संबंधित बात हम करेंगे और वो है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य अवेयरनेस मंथ भी चल रहा है और मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा मानसिक स्थिति है श्रोताओं, जिसे हम किसी पर्टिकुलर दिन या महीने तक नहीं मना सकते, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य हमारा ठीक ठाक रहेगा तो हमारी ज़िंदगी की जो पटरी है वो सही ट्रैक पर रहेगी, सही से चलेगी। और अगर वही ख़राब होगा तो ज़िंदगी में कितनी ही धन दौलत, कितनी ही खुशियाँ क्यों ना हो, व्यक्ति का मानसिक अगर संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना हो तो वो सारी दौलत बेकार सी लगती है, शून्य सी लगती है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य का ख़ास ख्याल रखना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। और हमारे परिवार में या आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसके प्रति भी हमें संवेदनशील रहना है और सही समय पर सही जगह पर उनका चेकअप करवाना या उनको सलाह देना भी हमारी ही समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है। और आप सब जानते हैं कि अगर शरीर बिल्कुल फिट तंदुरुस्त है और मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर उस जीवन का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए अपनी सेहत के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति हमेशा अवेयर रहें। तंदुरुस्त शरीर ही असली ज़िंदगी का आनंद ले सकता है, इसलिए सभी इस खूबसूरत सी प्यारी सी ज़िंदगी का आनंद लें। फिज़िकली फ़िट रहें, मेंटली फ़िट रहें और जो भी आपको मेंटली फ़िट रखने के लिए, खुश रखने के लिए जो चीज़ें करना अच्छा लगता है उन्हें ज़रूर कीजिए। 91.2 MHz पर श्रोताओं, आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं कार्यक्रम का अगला गीत। बने रहिए हमारे साथ 91.2 MHz पर।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। गीत से पहले बात कर रहे थे श्रोताओं मानसिक स्वास्थ्य की। जी हाँ, मानसिक स्वास्थ्य हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। और मानसिक स्वास्थ्य ठीक होने के बावजूद भी श्रोताओं हमें अपने मेंटल स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी कई बार ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई बार इतने व्यस्त होते हैं कि हमें परेशानियों ने घेरा होता है, स्ट्रेस होती है, काम का बोझ होता है, कई बार घर परिवार की जिम्मेदारियां भी हमें इतना बोझ या भारी लगने लगती हैं कि हमें लगता है कि सारा बोझ हमारे ही कंधों पे है और हमसे कुछ काम करते बनता नहीं है। हम उस सिचुएशन में जब घुसते हैं तो मन में उथल पुथल मची होती है और ध्यान कहीं और होता है और काम कहीं और कर रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति जब आपकी जॉब में रहते हुए या घर में रहते हुए बन जाए तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है। कई बार कुछ लोगों का होना हमारी ज़िंदगी में उनके ना होने से ज़्यादा मुझे लगता है ज़रूरी होता है। कई बार हम ऐसे लोगों के संपर्क में होते हैं जो हमारी मानसिक स्थिति को, मानसिक हालत को और भी ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों से कई बार हमें धीरे धीरे दूरी बनानी चाहिए अपने मानसिक स्वास्थ्य को फिट करने के लिए, फिट रखने के लिए। हम ये नहीं कह रहे कि हर किसी से ही दूरी बना लीजिए, लेकिन ये बात आप भी समझदार हैं, जानते होंगे कि जिन लोगों के साथ रह कर के आपको लगता है कि हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है और उन लोगों का साथ, उन लोगों की संगति हमें जो है वो दिन प्रतिदिन नीचे ही धकेल रही है, तो ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाइए, समय निकालिए, कहीं अच्छी प्राकृतिक जगह पर जाइए, पहाड़ों पे जाइए, ज़रूरी नहीं है कहीं खुले मैदान में जहाँ पेड़ हो, प्रकृति का साथ हो, वहाँ जाइए, लंबी गहरी सांसें लीजिए, योग प्राणायाम का सहारा लीजिए कुछ समय के लिए, ज़रूरी नहीं एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना भी आप इस प्रक्रिया को जो है वो कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, जब तक आपको

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ अब कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं आपको एक और प्यारा सा गीत। बने रहिए यूं ही हमारे साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ।
1: तो
0: और श्रोताओं लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपने रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब से कुछ ही देर बाद 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

0: विषय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज बैठक किया। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कृषि बिल का उल्लेख करते हुए कहा कि विकास भी विरासत भी का संदेश, विकास के साथ साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखने के महत्व को रेखांकित करता है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि भटियात विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों पर जून भटियात क्षेत्र की मलुंडा पंचायत में नवनिर्मित पेयजल योजना का लोकार्पण करने के बाद कैथली गांव में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कुलदीप पठानिया ने कहा कि क्षेत्र में वर्तमान में 365 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राष्ट्र बनाने में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। नगर में माई युवा भारत द्वारा आयोजित बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में महिला विवाह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2019 तक देश को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है और इस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं।
1: निरंतर देखा जा रहा है जो कि हमारे देश के लिए जो कि एक बड़ा देश है जहाँ 70% आबादी 35% की है। ऐसे देश में अगर युवा हमारे लड़की को भेज बनाएंगे तो चिंता का विषय हमारे देश के

0: नीति को भारत के भविष्य और युवाओं को सशक्त बनाने वाला बड़ा कदम बताया है।
1: साथियों, एक और हम एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, साथ ही शिक्षा व्यवस्था को भी आधुनिक जरूरतों के हिसाब से ढाला जा रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत के युवाओं

श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ।

श्रोताओ, आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, कार्यक्रम में अब एक ज़रूरी सूचना आपको देना चाहते हैं। हमारे स्टूडियो में आए थे एक बहुत ही अच्छे प्यारे से उभरते हुए चित्रकार अमन सिंह गुलेरिया जी, जिनके साथ बातचीत की हमने। और इस बातचीत का जो आप रिकॉर्डिंग है वो कल दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक इसका पुनः प्रसारण रेडियो गुंजन द्वारा किया जा रहा है। तो आप इस कार्यक्रम को सुनना चाहते हैं तो ज़रूर सुनिए, 12 बजे से दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। और अमन सिंह गुलेरिया की चित्रकारी का जो सफ़र है उसके बारे में आप इस बातचीत में सुन सकते हैं। श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। और अब समय हो रहा है कुछ ही मिनटों में आपसे विदा लेने का, और आपसे यही कहेंगे कि बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। ज़िंदगी में खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और साथ ही साथ मेंटल हेल्थ का भी पूरा पूरा ख्याल रखिए। सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

0: पड़ी मुहूर्त कब का निकला?
1: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
0: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
2: आप चिंता ना करें।
0: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का है? ये तो खोटा सिक्का है।
2: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
3: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
4: तुम क्या खड़ा हो?
3: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाएं, पक्का?
3: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
6: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
7: दहेज मुक्त बिहार, संकल्प हमारा।
8: शालू
9: बात माने ना तो करवा ले।
8: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
9: अरे वाह, नौकरी लग गई
8: जी,
9: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
8: अरे काका भी है।
9: अच्छा
8: काका लड्डू खाओ।
10: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
8: बैंक में काका।
11: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
12: अरे भाई विक्की तू तो बड़ा आदमी हो गया यार,
11: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
8: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
13: बैंक में नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
12: क्यों भाई?
13: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
12: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
14: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
8: जी।
15: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
16: वही असली तरक्की।
15: एक कदम स्वच्छता की ओर।
17: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं बस दूर जाना चाहता है, और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते, उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं, वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
2: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
5: क्यों, क्या हुआ?
2: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
5: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ।
6: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
7: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
6: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया?
7: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

ये गजल भी मैंने अर्ज किया था ना, कुछ मेरी तरफ से मेरी फरमाइशों पर सुन लें, कुछ फिर आपकी फरमाइशें मेरे सर माथे पे वो सुनाऊंगा। ये भी नई गजल है, आगा बिस्मिल की ये गजल है।

गजल पेश खिदमत है आगा बिस्मिल। गौर से सुनेंगे इंशाल्लाह, तो अगर ना मजा आया तो छोड़ दूंगा बीच में, उसकी रहमत से, अल्लाह की रहमत से अगर ना मजा आया तो छोड़ दूंगा, ये वादा रहा, मगर गौर की जरूरत है।

ये शेर है उनके जमाल रुख पे उन्हीं का जमाल था, जमाल रोशनी और फिर उन्हीं की रोशनी थी, उनके जमाल रुख पे उनके रोशन चेहरे पे

एक चीज ऊपर वाले की ये देन है, उसकी मेहरबानी से है, अल्लाह की मेहरबानी से। 3 ऑक्टेव्स जिसको हम अपनी मौसीकी की जबान में सब तक कहते हैं, ये सब तक होती है 1 2 3, तो ये पूरी एक जैसी आवाज सुनाई।

नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। जय माता दी।

0: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
1: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
0: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
2: आप चिंता ना करें।
0: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
2: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
3: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज। काहे नहीं सुनते आप हमारी?
4: तुम क्या खड़ा हो?
3: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाएं, पक्का?
3: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
6: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
7: दहेज मुक्त बिहार, संकल्प हमारा।
8: शालू
9: माने ना तो करवा ले।
8: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
9: अरे वाह, नौकरी लग गई
8: जी।
9: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
8: अरे काका भी है।
9: अच्छा,
8: काका लड्डू खाओ।
10: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
8: बैंक में काका।
11: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
12: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
11: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
8: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
13: बैंक में नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
12: क्यों भाई?
13: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
12: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
14: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
8: जी।
15: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
16: वही असली तरक्की।
15: एक कदम स्वच्छता की ओर।
17: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता है। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं, बस दूर जाना चाहता है। और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते, उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं, वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
5: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
6: क्यों, क्या हुआ?
5: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
6: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ।
7: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
8: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
7: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया?
8: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। जय माता दी।

0: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
1: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
0: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
2: आप चिंता ना करें।
0: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का है? ये तो खोटा सिक्का है।
2: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
3: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज। काहे नहीं सुनते आप हमारी?
4: तुम क्या खड़ा हो?
3: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाएं, पक्का?
3: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
6: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
7: दहेज मुक्त बिहार, संकल्प हमारा।
8: शालू
9: माने ना तो करवा ले।
8: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
9: अरे वाह, नौकरी लग गई
8: जी,
9: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
8: अरे काका भी है।
9: अच्छा,
8: काका लड्डू खाओ।
10: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
8: बैंक में काका।
11: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
12: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
11: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
8: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
13: बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
12: क्यों भाई?
13: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
12: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
14: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
8: जी।
15: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
16: वही असली तरक्की।
15: एक कदम स्वच्छता की ओर।
17: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं, बस दूर जाना चाहता है। और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि कुछ

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
5: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
6: क्यों, क्या हुआ?
5: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
6: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ।
7: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
8: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
7: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया।
8: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

गुंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

नमस्कार दोस्तों, 91.2 ओमेगा हर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। मैं हूँ आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका। हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम भक्ति संगीत आराधना लेकर। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में और शारदीय नवरात्रि की चौथे नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आदिशक्ति माँ दुर्गा की चौथी स्वरूपा माँ कुष्मांडा, जिनकी दिव्य मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है, आज हम उनकी आराधना और भक्ति में लीन होकर अपने दिन की शुरुआत करेंगे। और इस प्यारे से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे माँ कुष्मांडा जी की आरती के साथ।

दोस्तों कार्यक्रम भक्ति संगीत आराधना आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। माँ कुष्मांडा को ऊर्जा, आरोग्य, सुख समृद्धि और सकारात्मकता की देवी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से माँ की आराधना करने वाले भक्तों के जीवन में आशा और नई ऊर्जा का संचार होता है। तो आइए मन में श्रद्धा, हृदय में विश्वास और होठों पर माँ का नाम लेकर जुड़ते हैं माँ की कथा के साथ। तो आइए सुनते हैं माँ कुष्मांडा जी की कथा।